आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव है 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: वे गलत कार्यों से दूर रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इस पंक्ति को भूलते गए। लोग भौतिकवाद की ओर मुड़ते गए, डूबते गए उसमें। लोग अच्छे बुरे को भूल गए। इस अंध भौतिकवाद ने इंसान को मशीन बनाया, लेकिन पूरी तरह ये भी नहीं हो सका। मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, ऐसा हमारे धर्मग्रंथ भी कहते हैं। आज के लोग मानते हैं कि हम विज्ञान के युग के हैं और जब तक हम तर्क की कसौटी पर कस नहीं लेंगे, किसी भी बात को या सिद्धांत को मानेंगे नहीं। ऐसे ही कहने वाले लोग ईश्वर को भी नहीं मानते। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को भी ये मानना पड़ता है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा। एक जगह ही घटना है, एक महिला एक बीमारी से ग्रस्त थी। उसका इलाज किसी भी चिकित्सक से नहीं हो रहा। आखिर में चिकित्सकों ने यह फैसला किया कि उसे मनोचिकित्सक के पास भेजा जाए। मनोचिकित्सक ने उस महिला को सम्मोहन विधि के द्वारा उसके जीवन की कुछ गुत्थियों के बारे में पूछा। कुछ ऐसी अनसुलझी गुत्थियाँ थीं जिन्हें जानना मनोचिकित्सक के लिए ज़रूरी था। तो महिला ने अपने कई जन्मों का ब्यौरा उस चिकित्सक को बताया। चिकित्सक ने उसके कुछ जन्मों को सत्यापित भी कराया, तो वो घटनाएं सही निकली। ये पता चला कि वो महिला अपने पहले के जो जन्म थे उनके कर्मों के हिसाब से ही अगले जन्म में सुख या दुख भोग रही थी, और उसके इस जन्म की व्याधि भी पहले जन्म के कर्म के कारण ही थी। इस घटना के बाद उस महिला के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। इसे चिकित्सकों ने अपने से देखा और जांचा परखा है। पता नहीं ये तथ्य कितना वैज्ञानिक तौर पर मान्य है, लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं कि पिछले जन्मों की बात हम न भी माने तो इस जन्म में हम जो कार्य करते हैं, आने वाले समय में हमें उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। छोटी सी एक बात है, हम कोई गड्ढा यदि खोद दें कि उसमें हमारा कोई शत्रु आकर गिर जाए, तो किसी न किसी दिन उस रास्ते से हमें भी गुजरना पड़ता है, और तब हो सकता है कि उस गड्ढे में हम गिर जाएं। ऐसा तो सभी लोग मानते हैं। तो हम ये क्यों नहीं माने कि हम आज अगर कुछ गलत कार्य करेंगे तो इसी जन्म में हमें अपने इसी मानव जीवन में उसका परिणाम झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कहा गया है ना रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तो तस फल चाखा। कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे के लिए धन जमा करके रखता है, उसी तरह से हमको भी अपने आने वाले समय के लिए अपने कर्मों का संचय करना चाहिए। अच्छा, यदि हम मान भी लें कि ये सब बातें बेकार है, फिर भी यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? वो अच्छे कार्य हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारे अपने बाल बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए अच्छे फल देकर जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है अगस्त मास की प्रमुख कृषि कार्य। जानकारी दे रहे हैं देव नारायण यादव।
2: नमस्कार, आजू कृषि चर्चाक संग हम छी देव नारायण यादव। किसान श्रोता लोकन, आजू कृषि चर्चा में चर्च कर रहल छी अगस्त मास का प्रमुख कृषि काज पर। किसान श्रोता लोकन, जुलाई माह में रोपल गेल धान का नेत्रजन से उपरिवेशन करबाक चाही। संग संग खरीफ मक्का में धनबाल निकलला से पहिने नेत्रजनक शेष मात्रा कमठौन कैला के बाद द देबाक चाही। राहर उड़द में निकौनी कमौनी क सितंबर वाला राहर लेल खेतक तैयारी करबाक चाही। संग संग मौसम के अनुकूल माह के अंत धरि बुआई सेहो करी।

कर्म गति टारे नहीं टरे। एक समय था जब सब लोगों को हम यही बोलते हुए सुनते थे, कोई भी काम अगर नहीं हुआ तो व्यक्ति सामान्य रूप से ये उदाहरण दे देता था, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे जितने करो उपाय। लोग जीवन में इसे याद रखते थे और इससे एक फायदा

0: मूंगफली में कमठान कऽ माटि चढ़ा देबाक चाही। नमी के देखत आवश्यकता अनुसार पटौनी सेहो करबाक चाही। संग संग कीट व्याधि से बचाव लेल उपचार वैज्ञानिक सलाह से सेहो करबाक चाही। कुसियार पर माटि चढ़ेबाक चाही आ हरियर पात के एक दोसर से नहीं बांधबाक चाही। शकरकंद जकरा गाम घर में अल्हुआ सेहो कहल जात अछि, ओकरा लेल समयक अनुकूल खेतक तैयारी करी। किसान श्रोता लोकन जेना अपना लोकन भोजन लेल अन्न पानि के ओरियान कराबै छी, ठीक ओना ही माल मवेशी लेल चारा फसिल के ओरियान करबाक चाही। जँ खेत पथार में चारा फसिल लगेने छी तऽ समयक अनुकूल चारा फसिल में निकाय गोराई के नेत्रजन से उपरिवेशन करबाक चाही। बरसाती तरकारी में निकाय गोराई के समुचित जल निकासीक प्रबंधन करबाक चाही। किसान श्रोता लोकन अप्रैल माह में खोदल गेल खद्धा में पपीता आम लीची आदि पौध के माह के अंत धरि लगा देबाक चाही। मसाला में मिर्चाई के रोपनी करबाक चाही आ जीवाणु खाद से बीया के उपचारित के लगेबाक चाही। बानकी में नव रोपित क्षेत्र में पहिल निकौनी कमौनी करबाक चाही। निकौनी कमौनीक पश्चात नेत्रजनक युक्त खाद 30 ग्राम यूरिया प्रति पौध देबाक चाही। मरल पौध के स्थान पर नवका पौध लगेबाक चाही। किसान श्रोता लोकन तीमन तरकारी में परवल के बुआई करबाक चाही। राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, राजेंद्र परवल 3, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक आ स्वर्ण सुरुचि प्रभेदक चयन करबाक चाही। खेत में 150 × 100 सेंटीमीटर के दूरी पर लगेबाक चाही। खेत के तैयारी काल प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन सरल गोबर के खाद आ 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करबाक चाही। केला स्वास्थ्य सर्कस बा टिशू कल्चर पौध का रोपाई करबाक चाही। नमहर पौध का 20 × 20 मीटर आ बोनी किस्म का 15 × 15 मीटर के दूरी पर लगेबाक चाही। प्रत्येक खद्धा में 5 किलोग्राम गोबर का खाद, 500 ग्राम अंडी के खल्ली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिला आ रोपाई से पहले सर्कस का कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना।

0: करना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए, और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज़ॉन EIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
4: आज की स्वास्थ्य चर्चा में डायबिटीज के लक्षणों और सावधानियों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नवीन कुमार से। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज है क्या?
5: डायबिटीज एक जीवन शैली रोग है जिसमें हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो है हमारे लॉन्ग टर्म में जा करके बहुत सारे अंग मेरे हमारे खराब होते हैं। मेरा यही कहना होगा कि डायबिटीज को कम नहीं आंकना चाहिए। डायबिटीज को आप ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से, रख रखाव से, सही तरीके से व्यायाम कर करके और समय पर चिकित्सीय सलाह ले करके, और ज़रूरत पड़े तो दवा लेने की जगह ज़रूरत है तो उसे लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको बचने का प्रयास करना चाहिए।

0: लक्षण,
1: लक्षण अगर किन्हीं भी मरीज को, अगर उनको पेशाब ज़्यादा हो रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, उनका वजन गिर रहा है, उनके घाव नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको कमजोरी लग रही है, देखने में दिक्कत, अचानक से उनके चश्मे का पावर चेंज हो गया, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके घर में उनके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह किसी को भी अगर डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को तुरंत पहले अपना जो है जाँच कराना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है।
0: जाँच हो जाए तो दवाओं की जरूरत है या नहीं? लोग कहते हैं प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है, तो प्री डायबिटिक में क्या दवाओं की कोई रोल है, या फिर डायबिटीज हो जाने के बाद दवाएं कब शुरू की जाए, इसको लेकर क्या
1: नहीं
0: कहेंगे?
1: प्री डायबिटिक में दवा की जरूरत नहीं है। प्री डायबिटिक में आप अपने आप को लेकिन डायबिटिक समझें और उसके हिसाब से खान पान और आप एक्सरसाइज परहेज ये आपको रखना है। जहाँ तक दवा की बात है, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज हैं तो आपको इंसुलिन लेना ही होगा, क्योंकि हमारे पास तो इंसुलिन बन नहीं रहा है वहाँ पे। टाइप 2 में आप वेट कर सकते हैं, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका HbA1c क्या है, उसके हिसाब से फिर प्लान किया जाता है क्या अभी दवा की जरूरत है या कुछ दिन वेट कर सकते हैं।
0: टाइप 1 में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, टाइप 2 में स्राव होता है, लेकिन क्या होता है?
1: डिफेक्टिव होता है, उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इंसुलिन हमारे पास बनता है बट उसको काम करने के लिए नहीं दिया, कोई दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं जो उसको अपोज करते हैं कि तुम काम मत करो, तुम सेलुलर लेवल पर जो है शुगर को अंदर मत ले जाओ, ग्लूकोज को अंदर मत ले जाओ, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस।
0: डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जब डॉक्टर सलाह देते हैं कि अब आपको इंसुलिन लेने की जरूरत है और लोग चाहते हैं कि ये जो इंसुलिन लेने की जो स्थिति है उससे हम बचें, तो ये दोनों के बीच की जो बैरियर है, जो दीवार है, वो क्या है?
1: लोग जो समझते हैं कि इंसुलिन एक खराब चीज़ है, अगर 100 में 99 लोग तो लेना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़े कारण है इसका कि लोग सोचते हैं कि इंसुलिन ले लिया तो फिर आप कुछ नहीं, अब लास्ट है ये। बट लोगों को समझना चाहिए कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इंसुलिन की अगर कोई मरीज हैं और दवा खा रहे हैं, 3-4 दवा खा रहे हैं और फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब है कि उनमें दवा काम नहीं कर रही है, वैसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ेगा। या कोई एक्यूट इमरजेंसी है, सर्जरी होनी है, आईसीयू में भर्ती है, इन्फेक्शन है, तो वैसे केसों में भी इंसुलिन देना पड़ता है। तो इंसुलिन खराब चीज़ नहीं है, इंसुलिन अच्छी चीज़ है, उससे जो है ज़िंदगी में बदलाव आता है और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को हम लोग बहुत हद तक रोक पाते हैं। तो इसलिए इंसुलिन लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, जब ज़रूरत हो तो डॉक्टर सलाह दें तो उनको ज़रूर लेना।
0: सावधानियाँ
1: तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के घर में अगर मान लीजिए डायबिटीज़ है तो हेरिडिटरी फैक्टर होता है, या आप ओबेस हैं, सेडेंटरी लाइफ है, तो इसके लिए आपको परहेज करना चाहिए, आपके वेट को कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहीं मुझमें डायबिटीज़ तो नहीं आ रही है। तो जीवन शैली में बदलाव ला करके और दूसरों को भी प्रेरित करके अवेयरनेस फैलाइए कि आसपास में जो है डायबिटीज़ के लिए जो अवेयरनेस करिए। अभी ऐसे भी नवम्बर मंथ जो हम लोग डायबिटीज़ मंथ कहते हैं और 14 नवम्बर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़
0: डे मना रहे हैं
1: जी, तो इसमें जो है यही रखा गया है कि इलाज जो है ऐसा हो कि सब तक एक्सेस हो, कम्प्रिहेंसिव हो, अफोर्डेबल हो इलाज। तो ये सारा चीज़ थीम है हम लोगों का जो हम लोग करना चाहते हैं।
0: क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसको लेकर के भी बहुत तरह की भ्रांति है।
1: ऐसी कहीं कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, लेकिन संतुलित आहार खाएं और सिंपल शुगर जो होता है, मिठाई, चीनी, ये सबसे बचें, क्योंकि वो आपके चीनी के स्पाइक को बहुत जल्दी बढ़ाएगा।
0: फल
1: खाना चाहिए और बहुत सारा फल खाना चाहिए, क्योंकि फल से जो है फाइबर मिलता है और फाइबर रिक्वायरमेंट हम लोगों की जो होती है वो हम लोग बहुत कम लेते हैं।
0: डायबिटीज के लक्षणों और सावधानियों के बारे में डॉक्टर नवीन कुमार, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देश का

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं नंदलाल पाठक के स्वर में।

आकाशवाणी दरभंगा के केंद्र से हम बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है आलोक गांगुली का।

आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन AIR ऐप। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस का, मुख्य स्वर है रविंद्र साठे का।

इस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं। उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है।

रामचरितमानस का। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का समय होगा 9:10 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन के 10:00। भक्ति संगीत आप सुनेंगे 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुना करते हैं दिन के 11:00 से। 11:30 पर समय होगा फिल्म संगीत का। बारह बजे भी आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 12 को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार आप सुना करते हैं 12:30 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा हर दिन कुछ खास। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे 1:10 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का समय होगा 1:15 पर।

रोजगार सूचना का समय होता है 2:10 पर। पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रादेशिक संगीत का समय होगा 3:00। सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला। संध्या 5:00।

विद्यापद गीत आप सुना करते हैं संध्या 6:10 से। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है संध्या 6:30 से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा गांव की सफाई नैतिक जिम्मेदारी की पहचान। दूसरा चर्चा का विषय होगा विश्व स्तनपान सप्ताह। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 6:55 पर आप सुनेंगे किसान वाणी। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 7:52 पर। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8:30 पर आप सुनेंगे लोक गीत। 9:30 पर समय होगा साहित्य भारती का और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे। ये था आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण।

0: एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपि तु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट् मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000+ वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानास्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे।

0: जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 years के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार श्रोता लोकन। आजुक नमस्कार मिथिला कांक में हम रंजीत और हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित कुशल हूँ। हमार नमस्कार
0: रंजीत जी, आपको भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ नमस्कार मिथिला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुशल का प्यार भरा नमस्कार।
1: और जना कि श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम अपन करै छी सुविचार सँ, तो सबसे पहले आजुक सुविचार।
0: आज का सुविचार है चाणक्य नीति से। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देख के उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। यह है चाणक्य नीति।
1: देखो आचार्य चाणक्य जो शब्दक मूल जाल थी कतौ न कतौ हमारे लोगों के लिए प्रेरणा थी, स्रोत थी। और ओनाहतो एक अपना समाज में बड़ा प्रचलित दंत कथा, कंठ कथा, लोक कथा कहियो कहावत है जो समय सबसे पैघ बलवान हो, तो समय के संग हमारे लोगों के समझौता जरूर करवाक चाहिए। और एक डेग और आगा बढ़ाबे छी आजुक नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में, और जानकारी साझा करे

0: छे आजुक दिनक इतिहास के बारे में, जो आजुक दिनक यानी 1 अगस्त की खास मायने रखे थे हमारा राष्ट्र में हमारा समाज में जानकारी साझा करे छे कुशल कुमार।
1: आज ही के दिन सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी दिन स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। सन 1953 में आज ही के दिन भारत में सभी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और सन 1831 में आज ही के दिन कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना और नए लंदन ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया। सन 1858 में आज ही के दिन भारत में आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। सन 1975 में आज ही के दिन हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और आज ही के दिन 1981 में अमेरिका में एमटीवी चैनल की शुरुआत हुई जिससे संगीत वीडियो की दुनिया बदल गई। भारतीय फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म आज ही के दिन सन 1932 में हुआ।
0: संगे बताबे चली कि आइए के दिन 1774 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ प्रिंटली पहिल बेर म्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन के अलग कक ओकर पहचान कलन जाहि से रसायन विज्ञान के समझ बदल गेल और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास में महत्वपूर्ण आधारशिला साबित भेल। तो इछल आजुक दिनक इतिहास जन मालोक श्रोता लोकन से जानकारी साझा कलूँ और आजुक नमस्कार मिथिला कंकन के समय भेल जा रहा है। सबसे पहले मैथिली गीत सुनबा के आउ श्रोता लोकन अखन मालोकन सुनी छी सुंदर सन मैथिली गीत।

0: कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नजर डालने का, यानी हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित है रंजीत कुमार झा।
1: धन्यवाद कुशल, नमस्कार। TIR4 के तहत 32,388 गो शिक्षक के नियुक्ति लेल जे अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के पठा देल गेलै। एकरा तहत सबसँ बेसी 16,100 शिक्षक के नियुक्ति प्लस टू विद्यालय के लेल भेनाई अछि। सबसँ कम शिक्षक 3,847 प्राथमिक विद्यालय के लेल नियुक्त कयल जायत। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बतौलनि हैं कि पहिल बेर जिला शिक्षक के कर्मी के आकलन करायल गेलै। ओही के हिसाब से शिक्षक के बहाली के लऽ कऽ अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग के पठा देल जायत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तय मानक के हिसाब सँ बिहार में 1,06,288 शिक्षक बेसी छथि, जे अलग अलग जिला में काज कऽ रहल छथि। सब जिला के शिक्षक के कमी ओतय पठाओल जायत। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शुक्र को शिक्षा विभाग स्थित सभाकक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्थानांतरण से जुड़ल विभिन्न पहलू के जानकारी दिलन। ओ कहलन कि आकलन के बाद सामने आयल है कि पटना जिला में सबसे बेसी शिक्षक के पदस्थापना भेल है। एक संतुलित करवा के लिए सब जिला में स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लायल जायत। यातायात पुलिस के सिपाही, हवलदार और जायदाद जमादार, सहायक अवर निरीक्षक नहीं तो वाहन के जांच के लिए गाड़ी रोकता न कोनो रंगक ऑन द स्पॉट चलान काट सके छथि। एकर हुनक काज सिर्फ ट्रैफिकिंग रेगुलेशन सुगम यातायात के करेनाई छन। चलान से जुड़ल कोनो तरहक कार्रवाई दरोगा, सब इंस्पेक्टर या एकर ऊपर के पदाधिकारी करता। अगर ट्रैफिक पुलिस कर्मी एकर उल्लंघन करत पायल जेता तो हिनका विरुद्ध प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई कैल जेतन। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मी के लगातार भेट रहल शिकायत के बाद ADG यातायात सुधांशु कुमार अय से जुड़ल ई आदेश जारी कैलन है। राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई के ओर से उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवारी सदर में वंदे मातरम कवि सम्मेलन सह प्रेमचंद्र के 147वें जयंती समारोह आयोजित कयल गेल। कार्यक्रम के अध्यक्षता राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर राजकुमार भारती कयलनि। अध्यक्षीय संबोधन के बाद बतौलनि कि वंदे मातरम के 150 वर्ष होला पला पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन देशभरि में कार्यक्रम आयोजित करत। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, सृजात्मक और बाल केंद्रित शिक्षण के बढ़ावा देवा के लिए किलाघाट स्थित डाइट में शिक्षक के अलग अलग ढंग से प्रशिक्षित कर स्कूल पठाओल जा रहा है। अय उद्देश्य से आयोजित 5 दिवसीय शिक्षा में नाट्य कला कार्यशाला के शुक्रवार को समापन करत प्रशिक्षक और आयोजक आशा जतौलन कि आम बच्चा के सिखाव और पढ़ाव के प्रक्रिया और बेसी आनंदमयी भ जायत। कार्यशाला के आयोजन सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली तथा राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के संयुक्त तत्वावधान में कैल गेल। अमे विभिन्न विद्यालय के 122 गो शिक्षक भाग लेलन। समारोह में मुख्य अतिथि DEO विद्यानंद ठाकुर, संभाग प्रभारी सुनील कुमार, डाइट मधुबनी के प्रचार्य सुबोध कुमार और वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रसाद सेहो एकरा संबोधित कैलन। जिला बार एसोसिएशन भवन में शुक्रवार का कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के जयंती और अमर शहीद उद्धम सिंह के बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाओल गए। कार्यक्रम के अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता जितेंद्र नारायण झा करें। अ अवसर पर उपस्थित अधिवक्ता दुनू महान विभूति के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हुनका नमन कैलन। संबोधित कर अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी दुनू महापुरुष के बारे में हुनक कृतित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना अगला 5 वर्ष तक फेर बढ़ा दिल गेल है। योजना में वित्त वर्ष 2026-27 से लौकर 2030-31 तक जारी रखवा के मंजूरी दे दिल गेल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल एकरा लेल 3.15 लाख करोड़ रुपया के वित्तीय प्राविधान के स्वीकृति सेह देलक है। पात्र भूमिधारक किसान परिवार के पहले के जका प्रतिवर्ष 6,000 रुपये के आर्थिक सहायता 3 गो समान किस्त में सीधा बैंक के खाता में हस्तांतरित होत रहत, जैसे किसान के खेती में निवेश करवा के क्षमता बढ़ते, जोखिम कम है और किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती अ योजना के तहत से हो भेटल जा सकत। क्योटी प्रखंड में सैन

0: के दिन 2 बजे तक बिजली सेवा बाधित रहत। जलवारा शक्ति उपकेंद्र के लेल नवका सेपरेट यूजी केबल लाइन जोड़बाक लेल और मेंटेनेंस कार्य के लेल पंडोल ग्रिड सँ 33 KV रैया फीडर के आपूर्ति हो वाला विद्युत सुबह 10 बजे सँ लऽ कऽ 2 बजे तक फीडर के काज कयल जाय, ताहि लऽ कऽ ओहि इलाका में बिजली सेवा बाधित रहत। वरीय पुलिस अधीक्षक जग्गुनाथ रेड्डी जरा रेड्डी थाना अध्यक्ष के संगे लंबित कांड के समीक्षा के बैसार कयलनि, जाहि में थानावार लंबित कांड की समीक्षा कऽ कऽ निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन करबाक निर्देश देलनि। अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण पर चर्चा कऽ कऽ शराब के बरामदगी नशेरी गजेरी के विरुद्ध छापामारी के अभियान में तेजी लेबाक निर्देश देलनि हैं। ओतहि दागी के जाँच करबाक लेल ई साक्षी समन अद्यतन जारी रखबाक सेहो सूचना जारी कयलनि हैं और संगहि सब थाना अध्यक्ष के निर्देश देलनि हैं कि कड़ी चौकसी के संग थाना अध्यक्ष के पद के निर्वहन कयल जाय। BPSC के ओर सँ TIRE 4 में मैथिली विषय के TGT और PGT पद के संख्या में पर्याप्त वृद्धि और TRI 3 के रिक्त कऽ कऽ बैकलॉग पद के समायोजन और आवश्यकता अनुसार नवका शिक्षक पद के सृजन के लेल सांसद गोपाल जी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के चिट्ठी लिखलनि हैं और चिट्ठी में लिखलनि हैं कि एकरा जल्द सँ जल्द दूर कयल जाय। दरभंगा के रेलवे कनेक्टिविटी के हब बनाव के दिशा में एगो और बड़ पैघ सफलता भेटल है। दरभंगा सीतामढ़ी 64 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग के दोहरीकरण के लेल 407 करोड़ रुपया के निविदा के पहचान कऽ कऽ फाइनल कऽ देल गेल है। औपचारिकता पूरा कऽ लेल गेल है। जल्दी एहि परियोजना के निर्माण कार्य सेहो शुरू कयल जाय। एहि उपलब्धि पर सांसद सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर शुक्र के संसद भवन में रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सँ भेंट कऽ कऽ हुनका पाग अंग वस्त्र सँ सम्मान कयलनि और एहि फंड के देबाक लेल हुनका प्रति आभार सेहो जतौलनि हैं। दिव्यांगता कोनो अभिशाप नहि अछि, ई भी मुख्य धारा में शामिल भऽ कऽ जीवन के आगा बढ़ेबा के पूरा अधिकार हिनको छनि। बहादुरपुर प्रखंड के संसाधन केंद्र में 60 गो चिन्हित दिव्यांग बच्चा के बीच सहाय उपकरण वितरित करबा के बाद DPO संजय कुमार उक्त बात कहलनि। ओ कहलनि कि 5 वर्ष के व्हील चेयर, 4 वर्ष के बच्चा के ट्राई साइकिल और 25 वर्ष के बच्चा के श्रवण यंत्र और 19 बच्चा के MR किट सरकार के द्वारा प्रदान कयल गेल है। दरभंगा प्रखंड मुख्यालय में शुक्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन कुमार के अध्यक्षता में चीनी मिल के स्थापना और गन्ना उत्पादक किसान के निबंधन के लऽ कऽ बैसार आयोजित कयल गेल है, जाहि में गन्ना विकास विभाग के पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, पंचायत के मुखिया और प्रेस अध्यक्ष भाग लेलनि। बैसार के संबोधित करैत BDO जनप्रतिनिधि सँ अपील कयलनि हैं कि वो चीनी मिल के सुचारू संचालन सँ पूर्व बेसी सँ बेसी किसान के गन्ना विभाग के पोर्टल पर निबंधन कराबौ के लेल सहयोग करैत। ओ कहलनि हैं कि पहले चरण में इच्छुक किसान के निबंधन कयल जाय ताकि योजना के सौ समय पर गति देल जा सके। केवटी प्रखंड के 7 गो गाँव के विकास के मुख्य धारा सँ जुड़वा के दिशा में कल्याण विभाग बड़का पहल शुरू कऽ देलक है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचारी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एहि गांव में सर्वेक्षण शुरू कऽ देलक है। सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक गांव के वास्तविक जरूरत के आकलन तैयार कऽ कऽ ग्राम विकास योजना के संग एकर रिपोर्ट देल जायत और एहि गांव के लेल सारा व्यवस्थित व्यवस्था कयल जायत। अखन ई हालचाल अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड

अपनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश शुक्र का रमोली स्थित पंचायत सरकारी भवन के औचक निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान ओ पर्याप्त पंचायत सुविधा केंद्र के विधिवत उद्घाटन कयलनि और विकास योजना के प्रशासनिक व्यवस्था के जायजा सेहो लेलनि। कुशेश्वर स्थान के शिव मंदिर में सावन माह में श्रद्धालु के आगमन के देखैत प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कैलक है। खासकर शिवगंगा पोखर में स्नान के दौरान कोनो अप्रिय घटना के रोकबा के लिए विशेष चौकसी बरतल जा रहा है। न्यास समिति के अध्यक्ष SDO शशांक राज के निर्देश पर शुक्रवार को SDRF के एगो टीम एक महीना के लिए कुशेश्वर स्थान के शिवनगरी में तैनात कर दिल गया। ये टीम पूरे सावन महीना तक श्रद्धालु के सुरक्षा में तैनात रहता। पूर्वी CO राकेश रोशन भारती बतौलन कि शुक्रवार को SDRF 6 कर्मी कुशेश्वर स्थान पहुंच गेल छथि। मिथिला वन प्रमंडल के अंतर्गत आवे वाला आम नागरिक और किसान के जंगली जानवर सब फसल संपत्ति और जान माल के क्षति पहुँचाव जेबा पर बिहार सरकार त्वरित आर्थिक सहायता देवा के विशेष प्रावधान लागू कैलक है। बहेड़ी के वन रक्षी संध्या कुमारी बतौलन कि जंगली सुअर, शियार, नील गाय आदि संरक्षित जानवर के द्वारा नुकसान पहुँचाव जला पर मुआवजा निर्धारित कैल जाए। मानव मृत्यु पर 10 लाख, गंभीर चोट पर 1.44 लाख तथा मामूली चोट पर 24,000 रुपया के सरकार के द्वारा प्रदान कैल गेल है। फसल के नुकसान पर 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, भैंस के मृत्यु पर 24,000 और बकरी के मृत्यु पर 7,200 रुपया जखन की बकरा के मृत्यु पर 4,800 रुपया देवा के लेल सरकार के तरफ से प्रधान प्राविधान पास कैल गेल है। अही के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि तो सम्पन्न होते। नमस्कार।
0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: हालचाल के बाद एक बार फिर से लौटकर अपने का स्वागत है अपने के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। हम रंजीत और हमारे संगे स्टूडियो में उपस्थित है कुशल। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यातायात संबंधी जानकारी के बारे में। तो श्रोता लोकन के बताबत चलिए कि यातायात संबंधी में जे हमारोकन के सूचना प्राप्त है विभिन्न यातायात के साधन के, तो जिला प्रशासन के तरफ से जे वनवे सिस्टम लागू रहते हैं, वनवे सिस्टम आइयो लागू रहत, ओमे कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल है। जो कोनो VVIP मूवमेंट के कारण ओमे फेरबदल कैल जाए तो ओकर सूचना अपने लोकन के आकाशवाणी दरभंगा के परिवार के द्वारा जरूर देल जाए। जो बात करी हमारोकन रेलवे सफर के, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जाहि गाड़ी के जे आगमन के समय है और जाहि गाड़ी के जे प्रस्थान करवा के समय निर्धारित है, ओमे कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल है। हाँ, अगर मौसम खराब होइए तो ओकर असर कुछ ओहि परिचालन पर पड़ सकैत अछि। जहाँ तक बात करी हमारे हवाई सफर के, तो हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से जाहि विमान के जे परिचालन के समय

0: निर्धारित कयल गेल अछि। ओहि मे कतौ कोनो फेरबदल हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ सँ नहि कयल गेलै, लेकिन आइ भोरे जखन मालूम के निकलै छन हुए स्टूडियो के लेल अपना आवाज सँ, तऽ मेघ मे किछु काला भादल और किछु मौसम ठंडापन महसूस होइत छल। तऽ अगर मौसम खराब भेल, बारिश भेल, तऽ भऽ सकैए हवाई सफर मे जे ओकर परिचालन के समय अछि ताहिमे किछु ऊपर नीचा भऽ सकैत अछि। ओना श्रोता लोकनि, एकटा बात हम आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ सँ अपील करब जे जँ आइ अपने लोकनिके कोनो सफर करबाक योजना हुए तऽ ओहिठाम हुनका जे इन्क्वायरी नम्बर देल गेल छै, आओर आइ काल्हि तऽ सबके हाथमे एंड्रॉयड मोबाइल अछि, सब गोटे मोबाइले पर आब आकाशवाणी दरभंगा सेहो सुनै छी, तऽ एक बेर ओकर इन्क्वायरी सेहो मोबाइल पर कऽ लेबै। पूछताछ नम्बर नहि पहिले होइ छलै, इन्क्वायरी नम्बर, ओही नम्बर पर एक बेर पूछताछ कऽ लेब, ओकरा बाद अपन सफरके शुरुआत करब।
1: कार्यक्रम में बात करते हैं मौसम संबंधी।
0: हाँ हाँ,
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 1 से 5 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना नहीं है। हालांकि 2 से 4 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, दरभंगा, सीवान, पूर्वी चंपारण जिलों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। शेष स्थानों पर पूर्वानुमानित अवधि में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा के समय आसमान में मध्यम से बादल छाए रह सकते हैं, अन्य समय आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। पूर्वानुमान अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80% तथा दोपहर के समय सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 45% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।
0: और कुशल एक कार्यक्रम संबंधी सूचना हमारे लोगों के बीच जो हम श्रोता लोगों से जानकारी साझा करे छी, जे स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी तो है ही, स्तनपान कराना माता के लिए भी फायदेमंद होते हैं। स्तनपान के फायदे, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जमुरद्र परवीन, और प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06-272-222-481 और मोबाइल नंबर होगा 9-4-3-0-0-2-9-3-5-3। समय याद रखें रविवार 2 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। तो इस छल कार्यक्रम संबंधी सूचना जे श्रोता लोकन जानकारी साझा कलौ। और आजुक नमस्कार मिथिलांक में हम लोग के समय भ रहा है और घड़ी के सुई इशारा कर रहा है जे फिल्म संगीत के समय हमारे लोकन के भ गए। तो आओ सबसे पहले हमारे लोग फिल्म संगीत के आनंद ले, फिर श्रोता लोकन से हमारे लोग किछ बातचीत करब। तैसे पहले सुंदरसन फिल्म संगीत।

0: तो रंजीत जी, आज हम लोग कार्यक्रम में बात करेंगे संतुलित पोषण स्वस्थ जीवन की कुंजी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों के आज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास सब चीज़ का समय है, लेकिन खाने का समय नहीं है। कि चलते चलते कुछ भी जंक फूड या कुछ भी उनको मिल जाता है, तो काम करने के साथ साथ चलते चलते कुछ भी खा लेते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और स्वस्थ मन ही व्यक्ति को सफलता, सुख तथा समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। वर्तमान समय में बदलती जीवन शैली, भागदौड़, तनाव और जंक फूड के बढ़ते चलन के कारण लोगों का खानपान और असंतुलित होते जा रहा है। परिणामस्वरूप मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा कुपोषण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समाज में संतुलित भोजन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। संतुलित भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर उसे स्वस्थ, सक्रिय और रोग मुक्त बनाए रखने का आधार है। इसलिए कहा जाता है कि संतुलित भोजन स्वस्थ जीवन की कुंजी है।
1: निश्चित तौर पर कुशल रुखिए, भोजन मात्र पेट भरवा के एगो साधन नहीं छे, जबकि भोजन हमारोकन के एकटा परंपरा थिक। आए भोजन पर बहुत रास बात उठे छे, बहुत रास विद्वान, बहुत रास इतिहासकार बहुत रास बात लिखे छथिन, लेकिन जँ अहाँ मूल संदर्भ देखबै भोजन के, तो ओहि में अहाँ अगर थोड़ेक पाछा चली, आजुक जे ई आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति जे अपना आपके विश्व के सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी छथिन, लेकिन हम ओहि चीज के नहीं मानी छिए। हम निजीगत तथागत निजी में हम अपन राय कह रहल छी। आयुर्वेदिक रूप से अगर अहाँ भोजन के अथी देखियो, तो तीनिए टा चीज होइ छे भोजन में और शरीर के अंदर, बात कफ और पित्त। यह तीन टा एहन तत्व छे जे अहाँ के अगर शरीर में असंतुलित भऽ जाइए तो नाना प्रकार के बीमारी उत्पन्न होइए। कथी से? तो बात कफ और पित्त। और ये तीनों कथी से संतुलित कयल जाइ छे? तो आहार व्यवहार भोजन से। हमरा ओहिठमन भोजन के प्रणाली बनल छलैए, जे कोन महीना में हमरा की भक्षण करबाक अछि, कोन महीना में हमरा की भक्षण नहीं करबाक अछि। एकर आई के डेट में जकरा लोग विज्ञान कहै छथिन, पौराणिक डेट में ओकरा हमरा लोकन संस्कृति कहै छलियै, आई के विज्ञानो प्रमाणित करै छै, पहले ओ संस्कृत प्रमाणित करै छलैए, लेकिन तकरा बावजूदो हमरा लोकन स्वाद के पाछा पागल भेल छी। हमरा लोकन आई के डेट में भोजन नहीं कर रहल छी, स्वाद के चटकारा लऽ रहल छी। नीम के स्वाद बड़ कड़वा छै, लेकिन शरीर के लेलो बड़ फायदेमंद छै। त अहाँ एक से आदमी के ठार कहियौ जे हे चैत महीना में जे नीमक पत्ता कनी चबा लेब तो भरि साल शरीर स्वस्थ रहत, एक से में आदमी में से 90 गो आदमी कहता है नीम तो एहन होइ छै हम केना खायब, एकरा हम ही नहीं खायब। मिठाई खायब, आ बड़ा सुंदर स्वाद होइ छै, मिठाई खायब तो मधुमेह भऽ जायत। तो स्वाद के लेल अगर हम भोजन करै छी, सबसे बात अहाँ के हम बताबी जे स्वाद भोजन में नहीं छै, स्वाद भूख में छै। जखन अहाँ के भूख लागल रहत, तखन अहाँ के आगा में जे खाद्यान्न पदार्थ भेट जायत, वही वह अहाँ के अमृत के समान लागत। लेकिन जखन अहाँ के भूख नहीं लागल है, तो 56 प्रकार के मेवा अहाँ के सामने में परोस देल जाए, अहाँ के खेबा के इच्छा जागृत नहीं है। तो सबसे पहली बात जे स्वाद भूख में होइ छै, नहीं कि भोजन में होइ छै। आप दोसर बात कहलहुँ जे नीक स्वाद लोग के लागे छन, आइ काल्हि अहाँ पहले कहलहुँ चर्चा में जे जंक फूड, फास्ट फूड, आब ई सब की सब होइ छै। हमरा लोकनि तऽ मिथिला के लोग छी, दही चूड़ा सुपाच्य भोजन करै वाला लोग, ई फास्ट फूड लोग के नीक लगै छन खाए में। लोग ऑर्डर पर ऑर्डर तटघरा लऽ कऽ खाइ छथि, और भोर में कहता जे हमरा गैस बनि गेलै, हमरा आम्लिक स्थिति भऽ गेलै, हमरा कंठदाह दऽ रहल अछि, हमरा ई भऽ गेल अछि। औ बाबू, ई भऽ किएक रहल अछि? एहि चीज पर ने गौर करियौ। आइ चिकित्सक लोकनि सब गोटे के मना करै छथिन जे ज्यादा तेल वाला सामग्री, तेल पुल तरल तरल सामान नहीं खाओ, लेकिन आइ अगर अहाँ बाजार में चलि जाओ तो अहाँ जे दुकान देखबै तो 90% दुकान वही चीज के भेटत जे चीज खाए के लेल चिकित्सक अहाँ के मना करै छथि, और वही दुकान पर भीड़ो भेटत जे खाए के लेल हमरा

0: चिकित्सक मना कर दीजिए,
1: वहाँ है कि आपको बना बनाया मिल जाता है, लोगों के पास भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में लोगों के पास खाने तक के लिए समय नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा के लिए लोग आजकल चल रहे हैं। जिस तरह आपने बोला कि पेट भूख जो लगती है तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, वो एक पौष्टिक आहार के लिए भी होता है, लेकिन अब लोग सोचते हैं पैसा कमाने के साथ चलते चलते हमें रोड पे जो मिल जाए हम बस तुरंत पैसा दिए और खा लिए, तो वही होता है जंक फूड, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां से तो गुजरना पड़ता ही है, लेकिन आज तो उनका पेट भर गया।
0: अच्छा अच्छा, जंक फूड और फास्ट फूड के संगे के बाद और कुशल ध्यान देने वाला चीज़ हमारे लोग के मिलावटी खाद्य सामग्री में जो मिलावटी उत्पन्न भ रहा है और दिनानुदिन सोशल मीडिया अखबार रेडियो दूरदर्शन आदि से जो समाचार सुने छी वीडियो देखे छी अंतर समन बड़ा क्रोधित हो सेहो और दुखित से हो या। आब अहाँ देख लियो जे लोग केना मिलावट करी छथिन विक्रेता लोकनि, आइ काल्हि प्रसारित होइत रहैए, देख के बड़ा अचंभा लगे जे लोग के नियति अतेक अंदर अतेक नीचा खसि पड़लन जे लोग खाए पीबा वाला सामग्री में सेहो मिलावटी करय लगला है। मिलावटी एकटा सेहो सबसे पैघ समस्या थी।

0: क्रोधित हो या से हो और दुखित से हो या। आब अहाँ देख लियो जे लोग केना मिलावट करै छथिन विक्रेता लोकनि, आइकाल्हि प्रसारित होइत रहैए, देख कऽ बड़ा अचम्भा लगैए जे लोक के नियति अतेक अंदर अतेक नीचा खसि पड़लनि जे लोक खाय पीबय वाला सामग्री मे सेहो मिलावटी करय लगला है। मिलावटी एकटा सेहो सबसँ पैघ समस्या थिक। और दोसर बात कुशल हम चर्चा में एकटा चीज हम और जोड़ चाहब जे हमरा लोकनि अखन स्तनपान सप्ताह सेहो मना रहल छी।
1: हाँ,
0: बच्चा के लेल खास कऽ नवजात जे शिशु अछि, धियापुता अछि, ओकरा लेल माय के दूध सबसँ पैघ अमृत मानल गेलैए। और स्तनपान करनाइ माता के लेल सेहो मूल कर्तव्य में शामिल छै। लेकिन आइ काल्हि के युग में आब कारण जे होय, स्तनपान कराबसँ माता लोकनि सेहो आब किछु पाछा भागै छथि, कारण जे रहल होय। लेकिन अपने के हम बताबी जे चिकित्सक लोकनि के सलाह अगर मानी तैयो, वैदिक सलाह अगर मानी तैयो,
1: तब
0: शास्त्रीय सलाह मानी तैयो, सामाजिक सलाह मानी तैयो, माता पिता के सलाह मानी तैयो, स्तनपान करनाइ विश्व के सबसँ सुलभ और सबसँ सुंदर काज छिए। और कोनो बच्चा के लेल दुनिया के कोनो खाद्य पदार्थ में बहुत विटामिन ए बी सी डी ई कुछो भ जाए, लेकिन जे माय के दूध में विटामिन अबै छै, ओ माय के दूध में विटामिन के संगे संगे टा स्नेह जे अबै छै, ओ स्नेह ओ सब विटामिन पर भारी पड़े छै और सबसँ फायदेमंद होइ छै। ताई सब गोटे हम माता से आग्रह करै छियनि जे अपन अपन नवजात बच्चा के भरपूर मात्रा में स्तनपान कराबी। ऐसे अहाँ के शरीर के कोनो नुकसान नहीं होते, बच्चा के फायदा होइ छै। और स्तनपान जे माता कराबै छै तिनको ओहिसँ फायदा होइ छै, तऽ डबल फायदा होइ छै। तऽ ई कार्य निश्चित तौर पर करी। और कुशल घड़ी के स्विच टिक के किछ और इशारा हमरा लोकनि के करल अछि, तऽ श्रोता लोकनि संतुलित पोषण जीवन के लेल सबसँ पैघ आधारशिला राखैत अछि। एकरा पर हमरा लोकनि के सब गोटे पर सामूहिक रूप सँ सामाजिक रूप सँ दृष्टता दैत आगा बढ़बाक चाही। और फिलहाल नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हमारा लोकनि आगा बढ़ै छी और सुनै छी एकटा और सुंदर सन
1: संगीत।

0: अखन हमारे फिल्म संगीत सुनने छन वहाँ कुशल और आज नमस्कार मिथिला अंक सोलोकन के अब समय भौ गई श्रोता लोकन से विदा लेबा श्रोतालोकन के आधार पर मुस्कान हमेशा कायम रहन और एक और अपील करे सावन के महीना थी गाछ वृक्ष लगाब के लिए सबसे उपयुक्त समय मानल जात तो सब गोटे प्रकृति के बचाव के लिए एक टा गाछ वृक्ष जरूर लगाबी अही शब्द संग आज नमस्कार मिथिला के अंक सोलोकन लैत विदा
1: नमस्कार मिथिला।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की?
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:00 बजकर

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
2: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा।
5: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
6: ₹7,000 का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते, पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं की अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठ को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और

0: सकता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको ताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 8.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, शाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से सम्पन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर

0: तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब 12 करोड़ से ज्यादा मुफ्त उपचार किए चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड, आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।
1: अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भालाफेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सेना।
4: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान आने का अखबार की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल

0: अपने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है। पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद आखिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर अखबारों में सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज अंतर आत्मा को छोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, इसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में गांव में आतंकी हमला मजदूर की मौत नवभारत टाइम्स के पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है कश्मीर में आतंकियों के कर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदकने की अखबारों ने अपने पन्ने पर किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है 42 साल में पहली बार जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत सत्य है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित को ध्यान रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार विभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Margo. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and for fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka. India's concerns over on hostility in West Asia region urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in National Capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको ताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments and establishing

0: Life term for Tahir Hussain in Ankit Sharma murder case is a top headline in the Pioneer. Tribune under the headline, uniform was soaked in blood, corpse skin recount trauma after CJP protest violence. Reports that the family members of police personnel injured during the violence at the CJP protest have shared their ordeal and sought justice. In its editorial, how apps have built the modern consumer, Financial Express writes that modern life has a way of creating inconveniences out of the conveniences it promises. The paper says that they promise a user-friendly interface but become a surprisingly accurate portrait of their owners. The paper concludes that what began as an alternative to the website has evolved into a system of hyper-personalized nudges, inducements, and playful jabs on our phones. A top headline in The Hindu says, Trump touts Gaza deal, Hamas seeks Israeli exit, saying Hamas acknowledges the deal only if Israel withdraws the troops and stops killing Palestinians. And finally, the front page of Hindustan Times shows beaming faces of Asmita Day and Harsh Singh after winning the country's first ever gold medals in judo at the Commonwealth Games. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth, says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in the East Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free water travel with Spain over Ceuta migrant crisis and Commonwealth Games. India clinched two historic gold medals in judo, secure double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. And with that, in the morning news, have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई इख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जम्हूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखालिफाना कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमलों से गुरेज करे। इटली ने सियूटा माइग्रेंट्स बहरान के मामले पर खुली सरहद के रास्ते आने जाने की सहूलत मुअत्तल कर दी है। दौलतें मुश्तरका भारत ने नेजा फेंकने के मर्दों के मुकाबले में दो तमगे हासिल किए हैं। उसने डेक्थलॉन में अभी तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुरा भला कहने और नफरत से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने उन गुमराह कुन नौजवानों के तई हमदर्दी इख्तियार करने की अपील की है जो बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर और कौमी मफाद के जज्बे के सही रास्ते पर इन नौजवानों की रहनुमाई की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक वीडियो पैगाम में, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है, कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर हालिया वाकये का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी आजहानी वालिदा के खिलाफ गालम गलोच का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तमाम लोगों और दुनिया भर ने इन वाकयात का नजारा किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगरचे इस रवैये पर समाज में जो गुस्सा और मायूसी पाई जाती है वो बिल्कुल वाजह है, लेकिन बचपना सीखने, गलतियां करने और उनकी दुरुस्तगी का मरहला भी है।
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पब्लिक इम्तिहानात में

कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तिजारत की बहाली से सरहद पार तिजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतअल्लिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तिजारत चार दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम अपने ईरानी हमनसब अब्बास इराक़ची से बात की और मग़रिबी एशिया खित्ते में जारी कशीदगी पर भारत की गहरी तशवीश का इजहार किया। फोन पर हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत हाल में तजारती जहाजरानी और समंदरी अमले पर हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी फरीक की जानिब से किए गए इस तरह के किसी भी हमले की मजम्मत करता है। खारजा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें मौजूदा वाकयात और जारी बातचीत के ताल्लुक से ईरान के मौके से भी रोशनास कराया गया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बातचीत और सिफारत की तायीद करता है। इटली ने स्पेन के साथ खुली सरहद के रास्ते सफर की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है, क्योंकि मराकश की जानिब से स्पेन के सियूटा इलाके में आने वाले माइग्रेंट्स की तादाद में अचानक इजाफा हो गया था। इस कदम से परवाजों और समंदरी ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। स्पेन के शेंचिंग खुली सरहद के सफर की सहूलत पर असर पड़ेगा, जिसे हाल ही में मुअत्तल किया गया है। अभी तक इस सहूलत के तहत लोग 29 यूरोपीय मुल्कों में आजादाना तौर पर आमदोरफ्त करते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म एंड्री बर्नमैन से बातचीत की और ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी बातचीत में टेक्नोलॉजी इख्तिरा, दिफा, सलामती, साफ सुथरी तवानाई, तालीम और आवाम से आवाम के रिश्तों ने इस भारत बरतानिया जामे अहम शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने जैसे मैदानों में मिलकर काम करने से इत्तफाक किया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मालिक भारत और बरतानिया के आवाम की खुशहाली और तंदुरुस्ती के मकसद से तिजारत और सरमायाकारी के उन मौकों को भी पूरी तरह फरोग देंगे जो भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर हाल ही में अमल दरामद से पैदा हुए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरला और माहे में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी राजस्थान, बिहार से हिमालयी मगरबी बंगाल, अंडमान निकोबार, जजायर, लक्षद्वीप और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल भारत ने फिर से शानदार कारकर्दगी मुजाहरा किया है। उसने जूडो में सोने के दो तारीखी तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भी दो यादगार तमगे हासिल किए हैं, जबकि डेक्थलॉन में उसने अब तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। नेज 10 मुक्केबाजों ने अपने मुतअल्लिका जुमरों में फाइनल्स में जगह बनाई है। सरे 10 भारत सोने के 5, चांदी के 12 और कांसे के 6 तमगों के साथ कुल 23 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में 10वें मकाम पर है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कल अपना दौरा भूटान का सरकारी मुजाकरात की मुश्तरका सदारत की। 5वें मंसूबे की बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने भूटान के 13वें पंचसाला मंसूबे के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से अमल आवरी का जायजा लिया। मजमूई तौर पर 12 नए प्रोजेक्टों और मखसूस मंसूबों के लिए माली तआवुन से मुतालिक 332 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इनका ताल्लुक बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, शहरी सहूलियात और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों से है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा की आलमी टीम, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर बंदिश लगाए जाने के बाद मरकज ने तलब किया है, उसने एल्गोरिदम के जरिए जानिबदारी अपनाए जाने और अवामी नज्म व नस्त में इसके रोल से मुतालिक मामलात पर पूछताछ की जाएगी। सरकारी जराए ने हमारे नामानिगार को बताया कि उम्मीद है कि मेटा की इस आलमी टीम से अगले हफ्ते के वस्त में किसी वक्त पूछताछ की जाएगी। मेटा से पूछा जाएगा कि उसका एल्गोरिदम करता है और अवामी नज्म व नस्त में कंपनी का क्या रोल है। ये टीम एक पार्लियामानी कमेटी के सामने भी हाजिर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर नए हमले की तैयारी का हुक्म दिया है। अमरीकी मीडिया ने अफसरों का नाम बताए बगैर अपनी रिपोर्टों में कहा है कि इस मुजव्वजा हमले का मकसद तेहरान पर खुदसुपुर्दगी के लिए दबाव कायम करना है। ये रिपोर्टें उस वक्त मंजरेआम पर आई हैं जब ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती बातचीत के मुस्तकबिल पर सवाल उठाए हैं और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले के बाद सख्त फौजी जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस महाजराई से पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो गया है। ईरान ने बाद में अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया, जिसे खाम तेल, कुदरती गैस और खाद की तरसील में रखना पैदा हुआ।

0: दिल्ली सरकार ने अपनी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लाजमी इस्तेमाल की मुद्दतकार इस माह की 16 तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले के तहत कंडक्टर 15 अगस्त तक पिंक टिकट फराहम करते रहेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया अब्दुल वाहिद। राजधानी दिल्ली से छाए होने वाले आज के बेशतर अखबार ने अलग अलग खबरों को शेयर सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप सिंह वजीर ने मोदी के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है। इसमें कहा गया है कि आज आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपए से मुतादी तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कर्नाटक के मैसूर में वाकई श्री राम कृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सकाफती यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत के मुताबिक पेपर लीक के मुकदमा की समाअत अब नए मरहले में दाखिल हो गई है, जिसके सबब बसों से अदालतों में जेर इल्तवा मामलों में तेजी आएगी। नीज इस तरह के सभी मामलों को फास्ट्रैक अदालत में मुंतकली की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर रोजनामा इंकलाब ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी के जरिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी की खबर को उजागर किया है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जमहूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खत्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाईयों पर तशवीश की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमले से गुरेज करे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: सौ 21 किलो हर्ट्ज पर थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सर्वांगीण विकास,
1: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना है। अब इस फील्ड में जहां भी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना गया, सिर्फ जो पेपर लीक करते हैं नहीं, सारे जुड़े हुए हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। राज्य सरकार ने फसलों को जंगली सुअर और घुड़पड़ास से बचाने के लिए किसानों को इनके शिकार की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है। यह विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ये विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। कानून में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल किए गए हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय झा ने संसद से पारित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे छात्रों के लिए ऐतिहासिक बताया। श्री झा ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।
1: प्रधानमंत्री जी, डे वन से इस इशू को जब ये घटना हुई, चाहे एग्जाम कराना हो टाइम पर, चाहे कानून लाना हो, चाहे हाई पावर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना हो, अब इस फील्ड में जहां भी, और क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया, सिर्फ जो पेपर लीक करते हैं नहीं, सारे जुड़े हुए हैं, कोई कॉपी करने के लिए बैठा हुआ है विद्यार्थी, सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। अब इसमें बचेगा नहीं और हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलेगा उसको।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। योजना और विकास विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में पटना सहित राज्य के 54 शहरों के विकास के लिए 968 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। विभाग के स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के तहत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत तत्काल इन शहरों के लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने किसानों को घुड़पड़ास और जंगली सुअर से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए इनके शिकार की अनुमति दे दी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के चयनित जिलों की चिन्हित ग्राम पंचायतों में स्थानीय मुखिया को घुड़पड़ास और जंगली सुअर के शिकार की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। घोड़पड़ास

0: और जंगली सुअर मारने वाले व्यक्ति को प्रति शिकार 750 रुपए मिलेंगे। वहीं राज्य सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा राशि में भी वृद्धि की है। अब जंगली जानवर के हमले में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 1,44,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य में भूमि संबंधी पुराने दस्तावेजों के अनुवाद की सुविधा अब जिला स्तर पर उपलब्ध होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों में कैथी लिपि विशेषज्ञों को सूचीबद्ध किया है। प्रत्येक जिले में एक विशेषज्ञ तैनात किया जाएगा, जबकि 2 अतिरिक्त विशेषज्ञ विभागीय मुख्यालय में उपलब्ध रहेंगे। भूमि स्वामी जिला मुख्यालयों पर कैथी लिपि में लिखे पुराने दस्तावेजों का देवनागरी में अनुवाद करा सकेंगे। विभाग ने इस सेवा के लिए 220 रुपए प्रति पृष्ठ का शुल्क निर्धारित किया है। प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर त्रिपाठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर राज्यपाल को परामर्श देंगे। तेल कंपनियों ने व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी की है। घटी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पटना में 3,227 रुपए से घटकर 3,018 रुपए हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत देश भर में 10,000 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही चालक भर्ती परीक्षा के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। 4,361 पदों के लिए 24 अगस्त से पटना स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में चालक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस परीक्षा की तिथि, स्थान और प्रवेश पत्र की सूचना 10 अगस्त से परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। मतलब है कि इससे पहले 11,847 अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए चुना गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रोहतास के विक्रमगंज रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सहायक मंडल अभियंता कार्यालय के सहायक अभियंता भोला शंकर कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियंता पर एक एजेंसी की बकाया जमा राशि जारी करने के एवज में इन्वर्टर सेट बैटरी और 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इधर निगरानी विभाग ने औरंगाबाद जिले के रिसियप थाने के दारोगा उमेश कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दारोगा मारपीट के मामले में गलत रिपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, कटिहार, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम

0: एवं उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: नेपाल के सुनसरी में दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धनुषा और सिरहा जिला में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के कारण जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इधर नेपाल के तराई क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के बीच प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुपौल और अररिया जिले सहित सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और एसएसबी की टीम सघन गश्त और जांच अभियान चला रही है। भारत का ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में अपना पहला कांस्य पदक जीता और 10 भारतीय मुक्केबाजों ने अपनी अपनी कैटेगरी के फाइनल में जगह बना ली है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के अपने सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज ने 89.75 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि भारत की यशवीर सिंह ने अपने आखिरी प्रयास में 85.41 मीटर के अपने बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारत 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक समेत 23 पदकों के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है। भोजपुर जिले के बिलौटी पुनर्वास स्थल पर गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने कहा है कि नियमित निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाल में पेयजल की गुणवत्ता के संबंध में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए पुनर्वास स्थल पर स्थापित 6 चापाकल के पानी की जांच की गई। इनमें से वर्तमान में 5 चापाकल पूरी तरह कार्यशील है और इनका पानी सही है। भागलपुर जिले में श्रावणी मेला के सफल सुरक्षित एवं व्यवस्थित संचालन को लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान गंगा घाट तीन पहाड़ गंगा किनारा तथा घोघा एकचारी वेना पुल पर सुविधाओं का निरीक्षण किया। नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बैंकों और अधिकृत वेंडरों को लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए हैं। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त छापेमारी के दौरान 9 किलो गांजा बरामद किया गया। इधर बेगूसराय जिले के बरौनी रेलवे जंक्शन के दक्षिणी छोर के पास से राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के संयुक्त जांच अभियान में 86 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मानक से 65,413 शिक्षक अधिक। अखबार लिखता है आंगनबाड़ी बाल वाटिका पर भी तैनात होंगे शिक्षक। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है सिपाही और जमादार वाहन जांच चालान नहीं कर सकेंगे, पकड़े गए तो होगी कानूनी कार्रवाई। प्रभात खबर ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है भाजपा एमएलसी देवेश की जगह विधान परिषद में मनोनीत होंगे मंत्री दीपक प्रकाश। दैनिक भास्कर ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है हत्या के केस में एसटीएफ सिपाही अक्षय गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। राज्य सरकार ने फसलों को जंगली सुअर और घुड़पड़ास से बचाने के लिए किसानों को इनके शिकार की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज सीवान कटिहार अररिया और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
1: स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
0: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
4: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
5: irpatna@gmail.com
6: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: ایک بار پھر ہم روبرو ہیں انجمن لے کر. سامعین, 1992 سے باضابطہ طور پر عالمی بریسٹ فیڈنگ ہفتہ منانے کا آغاز ورلڈ الائنس فار بریسٹ فیڈنگ ایکشن کی جانب سے کیا گیا تھا. اس کا مقصد ماں کی دودھ کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور پیدائش کے پہلے گھنٹے میں دودھ پلانے کی ترغیب دینا, ساتھ ہی 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے کے فوائد سے آگاہی دینا ہے. ماں کے دودھ کی غذائیت اہمیت بے حد ہے, اس لیے ورکنگ ماؤں کے لیے ایسا ماحول بنانا ضروری ہے جہاں وہ آسانی سے بچے کو دودھ پلا سکیں. ڈبے کے دودھ یا دیگر متبادل اشیاء کے مقابلے میں ماں کے دودھ کو ترغیب دینا زیادہ ضروری ہے. ماں کے دودھ سے بچے کئی بیماریوں سے بچتے ہیں. سامعین, ہماری گفتگو چلتی رہے گی. فی الحال آئیے آج کی خاص پیشکش اردو ڈرامہ بے آبرو لمحوں کا درد سماعت کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تحریر نوید ہاشمی کی اور پیشکش جمال الدین ساحل کی ہے.
1: लो आ गया. क्या लोगे, तोता या मैना?
2: तोता भी और मैना भी. तुम इसी जगह ठहरो, मैं अपनी मम्मी को बुला कर लाता हूँ. मम्मी, ओ मम्मी,
3: क्या बात है राजू बेटे?
2: मम्मी बाहर आओ ना, तोता वाला है.
3: तोता वाला है? कौन तोता वाला?
2: बाहर आओ ना.
3: अच्छा बाबा, आती हूँ.
2: मम्मी मुझे तोता खरीदो ना, मैं इसे खेलूंगा.
4: छी, तुम मिट्टी के इस खिलौने से खेलोगे?
2: हाँ मम्मी, मैं इसे खेलूंगा. ये तोता मैना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खरीदो ना.
4: नहीं राजू बेटे, ये खिलौने तुम्हारे लायक नहीं है. चलो अंदर चलो.
2: नहीं, मैं खिलौने लूंगा, मैं खिलौने लूंगा.
1: जब बच्चा जिद कर रहा है तो खरीद दीजिए, सिर्फ 8 आने का तो है.
4: चुप रह, ये किसी गरीब का बेटा नहीं है जो मिट्टी के खिलौने से खेलेगा. इसका बाप ऑफिसर है. ऑफिसर, चल दफा हो यहाँ से. राजू बेटे, चलो अंदर चल. तो
2: नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा.
4: अच्छे बच्चे जिद नहीं करते. मैं आज ही तुम्हारे पापा से प्लास्टिक का खूबसूरत और कीमती तोते मैंने मंगवा दूंगी. चलो चुप हो जाओ. चलो बेटे चुप हो जाओ.
1: दौलत पर इतना घमंड.
5: तोता ले लो मैना ले लो.
2: तोता मैना वाले, इधर आना. इधर
1: अभी आया. क्या लोगी मुन्नी, तोता या मैना?
2: मैं तो तोता लूंगी. हरे रंग का ये तोता मुझे बहुत अच्छा लगता है. कितने का है ये तोता?
1: 8 आने का.
2: 8 आने का?
1: हाँ 8 आने का. लेना है?
2: हाँ हाँ लेना है. अगर नहीं लेना होता तो तुम्हें बुलाते क्यों? जरा ठहरो, मैं तो अपनी माँ को बुलाती हूँ. माँ, ओ माँ, जरा बाहर आना.
6: का बात है रे मंजू, काहे को चीख रही है?
2: तोता वाला आया है माँ, तोता वाला. बाहर
6: तोता
2: आ...
6: वाला? कौन तोता वाला?
2: ओफ माँ, बाहर आना.
6: अच्छा अच्छा, आती हूँ.
2: माँ मुझे ये तोता खरीद दो.
4: तुझे ये तोता खरीद दो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है?
2: मैं जब भी तुम्हें खिलौने खरीदने को कहती हूँ तुम यही कहा करती हो. तुमने कभी मुझे खिलौने खरीद कर नहीं दिए. आज मैं ये तोता जरूर लूंगी, मैं ये तोता जरूर लूंगी.
4: अच्छा अच्छा, ये तोता कितने का है भैया?
1: 8 आने का.
4: 8 आने का? मिट्टी का ये तोता 8 आने का? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है. नहीं नहीं तोते वाले, जाओ, मैं ये तोता नहीं खरीद सकूंगी. मैं गरीब औरत हूँ, 8 आने मेरे लिए बहुत होते हैं.
2: नहीं, मैं ये तोता लूंगी, तुम मुझे ये तोता खरीद दो. आज तक मैंने कभी भी खिलौने से नहीं खेला. मुझे ये तोता खरीद दो माँ, मुझे ये तोता खरीद दो.
4: तेरे भाग में खिलौने से खेलना लिखा होता तब न खेलती. तू तो नामुराद पैदा हुई है. तभी तेरे पैदा होते ही तेरा बाप मर गया और मुझे दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ गया. चल हट, मुझे जाने दे. अभी मालती देवी के घर का सारा काम बाकी है.
2: नहीं हटूंगी, मैं ये तोता लूंगी, मैं ये तोता लूंगी.
4: कह दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये तोता नहीं खरीद सकती.
2: नहीं नहीं, मैं ये तोता लूंगी, मैं ये तोता लूंगी.
4: देख मंजू, जिद न कर वरना पिटाई शुरू कर दूंगी. हाँ
1: आप भी अजीब औरत है. सिर्फ 8 आने के खिलौने के लिए आप इसे इस तरह रुला रही है और इसका दिल तोड़ रही है.
4: तुम दिल की बात करते हो भैया और

0: पेट की सोच रही हूँ। आठ आने में कुछ पैसे और मिला दूंगी तो एक पाव आटा आ जाएगा और इस आटे से हम दोनों के पेट भर जाएंगे। अब तुम ही बताओ कि मिट्टी का ये खिलौना जरूरी है कि आटा?
1: हाँ, आप ठीक कह रही हूँ। हम गरीब लोग अपने पेट की आग तो बुझा ही नहीं पाते, दिल की इच्छा कहाँ से पूरी कर सकते।
0: चल मंजू, चल, देर हो रही है।
1: मंजू बेटी, इधर आओ, लो ये खिलौने और अपने आंसू पोंछ लो।
0: नहीं नहीं मंजू, ये खिलौने नहीं लेगी।
1: क्यों नहीं लेगी? मैं ये खिलौने अपनी तरफ से दे रहा हूँ।
0: लेकिन तुम मुफ्त ये खिलौने क्यों दे रहे हो?
1: इसलिए कि इस गरीब का दिल न टूटे। यूँ तो गरीब बच्चों के दिल हर कदम पे टूटते रहते हैं, लेकिन इस मामूली से खिलौने के लिए किसी गरीब बच्चे का दिल टूट जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जाओ मंजू, जाओ खेलो।
2: तुम कितने अच्छे हो खिलौने वाले, कितने अच्छे।
1: एक तोता ले लो मैना ले लो, एक तोता ले लो मैना ले लो।
3: अरे अरुण, तुम इस हाल में? अरे तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं?
1: तुम शायद जफर हो ना?
3: आ यार, मैं जफर हूँ, जफर तुम्हारा दोस्त। कॉलेज के अपने इस दोस्त को बिल्कुल भूल गए?
1: किसी को भूल जाना इंसान के अपने बस की बात नहीं है दोस्त। वक्त और हालात इंसान को भूल जाने पर मजबूर कर देता है। और फिर ये कि हमारी मुलाकात भी तो 10 साल के बाद हो रही है।
3: हाँ यार, वो तो ठीक है, लेकिन मिट्टी के ये खिलौने कांधे पर लाते, गली गली फेरी, आखिर ये सब क्या है?
1: जीने की सजा। तुम मुझे देखकर ये अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि इंसान को जिंदगी कितनी प्यारी है। वो जिंदा रहने के लिए सब कुछ करता है।
3: हाँ यार, जिंदगी है ही अजीब गरीब चीज, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बेहद दुख हो रहा है।
1: ये तुम्हारी मोहब्बत है दोस्त, वरना मेरी तरह बहुत से लोग इस देश में इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये देखकर किसी को दुख नहीं होता। अच्छा जाने दो, तुम अपने बारे में बताओ, इन दिनों कहाँ हो और क्या कर रहे हो? अरे यार, सूट बूट देखकर तो ये अंदाजा हो रहा है कि तुम कोई लखपति हो या फिर बहुत बड़े ऑफिसर।
3: अरे नहीं यार, अभी मैं अफसर नहीं हुआ हूँ, अभी तो एक मामूली क्लर्क हूँ, लेकिन हाँ लखपति जरूर हो गया हूँ।
1: मामूली क्लर्क हो और लखपति हो गए हो? यार ये बात मेरी समझ में नहीं आई।
3: बात दरअसल ये है अरुण, कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है और तुम तो जानती हो कि आजकल रिश्वत का जमाना है।
1: हाँ यार, इसी रिश्वत के कारण तो मैं आज तक बेकार हूँ और नहीं चाहते हुए भी ये खानदानी पेशा अपनाए हुआ हूँ। तुम इस मामले में बहुत खुशनसीब साबित।
3: अरे नहीं यार, खुशनसीबी तो तब होती जब बगैर रिश्वत दिए मुझे नौकरी मिल गई होती। शायद तुम यकीन न करो, इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 2 बीघे खेत बेचकर पूरे 20,000 रुपए अपने एक अफसर को रिश्वत दी थी।
1: यार इसमें यकीन न करने की कौन सी बात है? आजकल बगैर रिश्वत या पैरवी के नौकरी मिलती कहाँ है? अगर मेरे पास भी पैरवी होती या रिश्वत देने के लिए रुपए होते तो तुम मुझे ऐसी हालत में न देखते।
3: बात तो दुरुस्त है, लेकिन रोजगार भी बुरा नहीं अगर ढंग का हो।
1: तब ना, तुम इसे रोजगार कहते हो जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती?
3: अरे हाँ यार, याद आया।
1: तुम इसे रोजगार कहते हो जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती?
3: अरे हाँ यार, याद आया। पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक स्कीम चल रही है, तुम इसमें अप्लाई क्यों नहीं करते? फिर ढंग का कोई रोजगार कर लेना, जिंदगी आराम से गुजरने लगेगी। क्यों?
1: तुम तो इस तरह कह गए जैसे अप्लाई करते ही लोन मिल जाता। अरे यार,
4: पद्मा, ए बेटी

0: पद्मा, ए बेटी पद्मा, क्या है माँ?
1: अरे सवेरा हो गया, उठ के बाहर के नल से पानी तो ले आ, और हाँ मिट्टी भी गूंद दे।
2: अच्छा माँ, मैं उठती हूँ।
1: अरुण, ए अरुण।
3: क्या है माँ?
1: आज उठेगा नहीं क्या?
3: क्या सवेरा हो गया?
1: हाँ बेटे, अब तो धूप भी निकल आई।
3: अरे धूप निकल आई, और मैं अब तक सोया हुआ हूँ।
1: हाँ रे, कई बार सोचा कि तुझे जगा दूँ, लेकिन ये सोचकर कि तू खुद ही जग जाएगा, नहीं जगाएगा। लेकिन जब धूप निकल आई और तू नहीं जगा तो मजबूरन ही जगाना पड़ा।
3: ठीक किया माँ, तुमने मुझे जगा दिया, वरना दिन भर मैं सोया ही रह जाता।
1: क्यों, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
3: हाँ माँ, अंदर से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जी चाह रहा है कि चुपचाप पड़ा रहूं।
1: दिन भर की मेहनत और सेवा सत्कार कुछ भी नहीं, बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे मैं तो कहते कहते थक गई कि बेटा ब्याह कर ले, बहू ले आ, पर तू है कि मेरी सुनता ही नहीं।
3: अरे माँ, तेरी बहू के आ जाने से क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा?
1: बीमार पड़ेगा तो वो तेरी सेवा तो करेगी।
3: मुझे सेवा की जरूरत नहीं है माँ, जब तक मैं पद्मा का ब्याह नहीं कर देता अपना ब्याह भी नहीं करूंगा, ये मेरा अटल फैसला है।
1: हाँ रे, अब तो वो भी जवान हो गई है, उसको देखती हूँ तो कलेजा कांप जाता है, ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ उसका ब्याह कैसे होगा।
3: उसकी चिंता तू काहे को करती है माँ, अभी मैं जिंदा हूँ। पद्मा, ओ पद्मा।
2: भैया,
3: मेरे लिए एक प्यारी चाय बना दे, और हाँ पतले में पानी लाकर दे दे, कुछ तोते मैंने बना लूँ।
1: क्या तू फेरी करने जाएगा?
3: हाँ माँ, अगर नहीं जाऊँगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा?
1: लेकिन तू तो कह रहा था कि।
3: तू मेरी चिंता ना कर माँ।
2: भैया तसले में पानी रख दिया है।
3: ठीक है। पद्मा जरा दरवाजे पे जाकर देख तो कौन आया है।
2: अच्छा भैया।
4: अरुण जी इसी मकान में रहते हैं ना?
2: जी हाँ, आप कौन हैं?
4: मेरा नाम जफर है, अरुण घर में है?
2: जी है, आप जरा ठहरिए, मैं उन्हें भेज देती हूँ।
4: अच्छा।
2: भैया एक साहब आए हैं, उनका नाम जफर है, तुमसे मिलना चाहते हैं।
3: अच्छा अच्छा, जफर आया है। अरे पगली, वो कोई साहब नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। जाजा उसे अंदर बुला ला।
2: भैया ने आपको अंदर बुलाया है, आइए।
4: अच्छा। अरे अरुण, तुम तोते मैंने बना रहे हो क्या?
3: हाँ यार, नहीं बनाऊंगा तो देखूंगा। आओ आओ बैठो, ऐसे चारपाई पर बैठो।
4: हाँ हाँ, बैठता हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन पद्मा है ना?
3: हाँ।
4: जब इतनी सी थी तब देखा था, अब तो काफी बड़ी हो गई।
3: हाँ, तुमने 10 साल पहले उसे देखा था।
4: हाँ। अच्छा, और तुम्हारी माँ और बीवी कहाँ है?
3: माँ पड़ोस में गई है, और बीवी अभी मैंने शादी की ही नहीं।
4: अच्छा, तो कब करोगे, बुढ़ापे में?
3: यार गरीबों की जवानी क्या और बुढ़ापा क्या, जब तक ढंग का कोई काम नहीं मिल जाता और पद्मा की शादी नहीं कर देता, अपने बारे में सोच भी नहीं सकता।
4: लेकिन अब तो सोचना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी नौकरी होने वाली है।
3: मेरी नौकरी होने वाली है? अरे तुमने कोई सपना तो नहीं देखा है?
4: मैं सपने देखने का आदी नहीं हूँ अरुण, मैं तो जो कुछ भी देखता हूँ खुली आंखों से देखता हूँ। ये लो, ये फॉर्म ले लो और भरकर कल तक जमा कर दो, एकदम नौकरी हो जाएगी।
3: सिर्फ फॉर्म भर देने से अगर नौकरी हो जाती तो मेरी नौकरी बहुत पहले हो गई होती। यार ऐसे फॉर्म बहुत भर चुका हूँ।
4: ओफो, मैं जानता हूँ नौकरी कैसे मिलती है दोस्त, तुम इसकी फिक्र न करो, सिर्फ फॉर्म भरकर जमा कर दो, बकिया मैं समझ लूंगा।
3: ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो जमा कर देता हूँ, देखता हूँ तुम मेरे लिए क्या करते हो।
4: ठीक है, देख लेना, मैं जा रहा हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा तुम्हारे
3: पास। यार ठीक।
2: भैया ये तुम्हारे दोस्त हैं?
3: हाँ।
2: लगता है तुम्हें बहुत मानते हैं।
3: हाँ बिल्कुल, अपने सगे भाई की तरह, जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी जमाने से।
2: भैया तब तो जफर भाई तुम्हारी नौकरी जरूर लगवा देंगे।
3: अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तेरा ब्याह करूँगा।

0: जाओ भैया, मैं तुमसे नहीं बोलती। हाँ
1: अरे तेरा मुंह बंद करने के लिए ही तो मैंने कह दिया था, ताकि तू चुप हो जा और मैं फेरी करने चला जाऊं, समझी?
2: मैं अंदर आ सकता हूँ सर?
3: यस, कहिए क्या बात है?
2: सर मैं उसी बहाली के सिलसिले में आया हूँ जो आप करने वाले हैं अपने डिपार्टमेंट में।
3: आई सी। देखिए मिस्टर, ये ऑफिस का चैम्बर है, मैं यहाँ इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता
2: जी।
3: इसलिए आपको जो भी बात करनी हो मेरे घर पर आकर करें। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड।
2: थैंक यू सर।

0: अच्छा आप आइए आइए तशरीफ रखिए।
1: थैंक यू सर।
0: हाँ अब कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: सर वो आपके यहाँ जो वैकेंसी है उसके लिए मेरे एक कैंडिडेट ने आपके डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, उसका इंटरव्यू भी हो चुका है। अगर सर आप
0: उसकी नौकरी हो जाएगी अगर मैं उसका फेवर कर दूं।
1: जी
0: आप यही कहना चाहते थे ना।
1: यस सर।
0: लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसका फेवर क्यों करूं, मेरा क्या फायदा होगा।
1: जी वो मैं आपको सर
0: कहिए रुक क्यों गए।
1: मैं आपको 10,000 रुपए मिठाई खाने के लिए दूंगा सर।
0: सिर्फ 10,000?
1: जी अगर 10,000 कम है तो फिर 15,000 ले लीजिए सर। मैं एक मामूली क्लर्क के लिए इससे ज्यादा क्या दे सकता हूँ।
0: ऐ मिस्टर आप मुझे रिश्वतखोर समझते हैं, मुझे रुपयों की लालच दे रहे हैं। शायद आप नहीं जानते कि मेरी निगाहों में रुपयों की कोई अहमियत नहीं।
1: ओह आई एम सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर।
0: मिस्टर आप तो एकदम नर्वस हो गए।
1: बात दरअसल ये है सर,
0: आजकल रिश्वत का जमाना है और बगैर रिश्वत दिए कोई काम भी नहीं होता है ना।
1: यस सर।
0: आपका सोचना बिल्कुल दुरुस्त है, रिश्वत मैं भी लेता हूँ लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या सर?
0: रुपयों के शक्ल में नहीं।
1: जी तब किस शक्ल में सर?
0: औरत की शक्ल में।
1: क्या मैं समझा नहीं सर।
0: बहुत भोले हैं आप, बहुत भोले। आपकी तो शादी हो गई होगी।
1: जी हाँ।
0: तो आप जरूर जानते होंगे कि औरत क्या शय है।
1: आप क्या कहना चाहते हैं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
0: अगर आप अपने कैंडिडेट की बहाली चाहते हैं तो एक खूबसूरत घरेलू लड़की का इंतजाम कीजिए। हाँ उस लड़की के मार्फत कैंडिडेट का नाम एक पर्ची पर लिखकर भेजना ना भूलिएगा। ये इंतजाम हो गया तो फिर अपने कैंडिडेट की बहाली समझिए, वरना मुश्किल है।

0: अरुण।
1: कौन? जफर?
0: हाँ।
1: अरे अंदर आ जाओ, आवाज देने की क्या जरूरत है?
2: अभी मैं उसी ऑफिसर से मिलकर आ रहा हूँ यार।
1: कौन ऑफिसर?
2: अरे वही जिसके हाथों में तुम्हारी बहाली है।
1: अच्छा अच्छा, क्या कहा उसने? मेरी बहाली हो जाएगी?
2: हो जाएगी हाँ, अगर।
1: अगर क्या? बोलो बोलो, रुक क्यों गए?
2: क्या बोलूं अरुण, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
1: आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं।
2: क्या बताऊं दोस्त, तुम्हें बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है।
1: जफर, ये सब डायलॉग क्यों बोल रहे हो? साफ साफ लफ्जों में क्यों नहीं कह देते कि रिश्वत की रकम ज्यादा है और तुम्हें गैर की खातिर इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते?
2: ये तुम क्या कह रहे हो अरुण?
1: मैं ठीक कह रहा हूँ जफर, पैसे से किसे प्यार नहीं। पैसे के इस प्यार ने ही इंसान को इंसान से और खून को खून से जुदा कर दिया है। और मैं ना तुम्हारा खून हुआ नहीं।
2: अरुण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मुझे तुमसे ज्यादा पैसे से प्यार होता तो मैं तुमसे फॉर्म नहीं भरवाता, बल्कि यू

0: समझ लो कि उस दिन गली के उस नुक्कड़ पर 10 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, नहीं होती मैं तुम पर एक उचटती सी निगाह डालकर आगे बढ़ जाता। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे पैसे से नहीं, तुमसे प्यार है, अपनी दोस्ती से प्यार है।
1: अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे साफ साफ बताओ, ऑफिसर से क्या बातें हुई?
0: कुछ न पूछो यार, रकम तो कुछ भी दी जा सकती है मगर।
1: यार तुम्हारी बातें पहले से कम नहीं, आखिर उसे रकम नहीं चाहिए तो फिर क्या, कुछ तो कहो, आखिर उसे क्या बातें हुई?
0: दफ्तर से छूटने के बाद मैं अफसर के घर गया था और उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मैं सख्ती मां गया।
1: फिर पहेली शुरू कर दी तुमने?
0: मैं तुम्हें पहेली नहीं बुझा रहा हूं दोस्त, मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि उस कमीने के लिए घरेलू लड़की का इंतजाम कहां से करूं, कौन लड़की तुम्हारी खातिर अपनी आबरू नीलाम करेगी, कौन?
1: उसे रिश्वत में लड़की चाहिए?
0: हाँ, और वो भी घरेलू।
1: मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जफर, नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद एक मासूम लड़की की आबरू पर टिकी हुई हो। मैं जिंदगी भर एहलियां रगड़ता रहूंगा लेकिन किसी मासूम लड़की की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। यार तुम मेरी नौकरी की चिंता छोड़ दो। हाँ, मैं जिस हाल में हूं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक है।
0: अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न आए तो खुद ही उस अफसर से मिल लेना, यह है उसका विजिटिंग कार्ड। अच्छा अरुण, मैं चलता हूं।
1: मुझे शर्मिंदा ना करो दोस्त, मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर पूरा नाज है।
2: भैया चाय। तू आ गया बेटे, ये ले कागज, पद्मा ने दिया है, कह रही थी बहुत जरूरी कागज है, भैया के हाथ में ही देना।
1: अरे ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है, मेरी नौकरी हो गई माँ।
2: अच्छा,
1: मेरी नौकरी हो गई माँ।
2: तेरी नौकरी हो गई?
1: हाँ माँ, मेरी नौकरी हो गई।
2: हे भगवान, तेरा लाख लाख कृपा है कि तूने मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दी।
1: माँ अब तेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी और पद्मा की शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, हाँ अब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन ये लेटर पद्मा को कहाँ से मिला? माँ पोस्टमैन आया था या जफर ने ला कर दिया?
2: पता नहीं बेटा, पद्मा से ही पूछ ले।
1: पद्मा कहाँ है माँ?
2: कमरे में होगी।
1: पद्मा, ए पद्मा, अरे सुनते क्यों नहीं? माँ पद्मा कमरे में कहाँ है?
2: तो फिर कहाँ गई? मेरे आने से पहले तो यही थी।
1: उफ, अजीब लड़की है ये भी।
2: अरे ये चारपाई पर कागज का कैसा टुकड़ा पड़ा हुआ है, देख तो।
1: कौन सा टुकड़ा?
2: ये देख।
1: अरे ये तो पद्मा की लिखाई है।
3: भैया अब मैं तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं रही, इसलिए घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरी मंजिल कहाँ है मैं खुद नहीं जानती, बस तुम लोगों के किसी काम आ गई, इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करना।
1: तूने क्या क्या पद्मा, ये तूने क्या क्या, मैं मिट्टी के तोते मैंने भेज कर अपनी जिंदगी गुजार लेता।
2: अरे अरे क्या हुआ अरुण? अरे कुछ तो बोल। अरे कुछ बोल
1: बेटे।
2: अरे बोल ना रुक, हुआ क्या? अरे कहाँ गई पद्मा? अरे मेरी पद्मा कहाँ गई यारो? अरे बोल पद्मा, मेरे
1: पद्मा,
2: मेरी पद्मा कहाँ गई?
4: سامین ہماری گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل آئیے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں۔

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी से। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, जिसे लिया है फिल्म जान तेरे नाम से। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत है समीर का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी तो है ही, स्तनपान कराना माता के लिए भी फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे, यही है आकाशवाणी दरभंगा की फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे

डॉक्टर जमूरत परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 06272222481। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 06272222481। मोबाइल नंबर है 9430029353। मोबाइल नंबर भी एक बार फिर से सुन लें, 9430029353। समय याद रखें, रविवार 2 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सलामी से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत रचना है समीर की।

बागबान फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और गीत रचना समीर की।

इतिहास फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। संगीत दिलीप सेन का है और समीर सेन का, गीत समीर का है और इस गीत को गाया है अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीता पर यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत, स्वर है लता मंगेशकर का।

पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

हरिहरन के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी भजन के साथ भक्ति संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, आज की पहली सभा को आगे लेकर चलते हैं और सुनते हैं हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे संतूर वादन में राग यमन, तीन ताल में निबद्ध पंडित भजन सपूरी के द्वारा।

पंडित भजन सुपोरी के द्वारा भी आप सुन रहे थे संतूर वादन राग यमन तीन ताल में निबद्ध। प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

फिल्म यस बॉस से लिए गए इस गीत को भी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म समीर फिल्म सलामी से लिए गए गीत को। नदीम श्रवण के संगीत से सजाया इस गीत को समीर ने लिखा है और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू ने।

श्रोता भी अपन आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। एक आपके लिए कार्यक्रम संबंधी सूचना, श्रोताओं स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी तो है ही, स्तनपान कराना माता के लिए भी।

फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जुर्मुद परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर है 0627222481 और हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 2 अगस्त यानी कि कल 2026 दिन के 11 बजे। सूचना के बाद आइए फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का और सुनते हैं फिल्म इक्का राजा रानी से लिए गए इस गीत को अलका याग्निक और विनोद राठौर के युगल आवाज में।

आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में फिल्म मासूम से लिए गए इस गीत को। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मिस्टर बॉन्ड से अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

फिल्म सनम बेवफा का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर की। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये सफर अभी हम विराम देते हैं फिर, और अब वक्त हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का। तो आइए आज हमारे कार्यक्रम नारी संसार से मिलते हैं आपकी रेडियो।

नमस्कार बहनों, नारी संसार के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। बहनों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी श्रावण मास का मौसम चल रहा है और इस श्रावण मास में जहां एक ओर हर तरफ शिव भक्तों की टोली बोलबम के नारे से सभा बांधते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिश की फुहारे से हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होती है। साथ ही चिलचिलाती धूप से भी लोग परेशान हो रहे हैं। जी हाँ बहनों, पर काम तो हर किसी को करना ही है और हर कोई अपने अपने कामों में अग्रसर है। तो हम भी आ गई हूँ आपसे ढेर सारे बातें करने। जी हाँ बहनों, और चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। बहनों, आपको पता होगा कि आज विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है ये सप्ताह। इसका मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए माँ के दूध के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, जन्म के तुरंत बाद माँ का गाढ़ा पीला दूध शिशु को अमृत के समान होता है और ये हमें देना चाहिए, जो प्राकृतिक टीके की तरह काम करता है। इसलिए 6 महीने तक केवल स्तनपान बहुत ज़रूरी है। बच्चों को शुरुआती 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चों के लिए अमृत का समान होता है। इसके अलावा पानी या अन्य ऊपरी चीज़ें नहीं देना चाहिए। स्तनपान का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु को संपूर्ण पोषण, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करना है। माँ के दूध में बच्चों को संपूर्ण पोषण मिल जाते हैं। सभी विटामिन, प्रोटीन और वसा सभी इसमें समाहित होते हैं और ये दूध बहुत हल्का होता है और बच्चे इसे आसानी से भी पचा लेते हैं और माँ और बच्चे के बीच इसे प्यार और अपनेपन के रिश्ते को गहरा करता है। सखी बहनों, इस रिश्ते को गहरा करता है। और ध्यान रखें, दूध पिलाने वाली माँ चाय या कॉफ़ी दिन में कम से कम 1 या 2 बार ही पी सकते हैं। ज़्यादा पीने से बच्चे के पेट में जलन हो सकता है, बच्चे बेचैन हो सकते हैं और वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। साथ ही इसे गैस बनाने लगता है। और ये भी ध्यान रखें कि गैस बनाने वाला खाना जैसे राजमा, छोले, गोभी या बहुत ज़्यादा मसालेदार और तले हुए भोजन से बच्चे को पेट दर्द या गैस हो सकती है। इसके अलावा जंक फूड या गैस से बचाव करें। इसके अलावा आप जंक फूड या पिज्जा बर्गर खाने से बचें और पोषण से भरपूर भोजन करें। साथ ही खूब पानी पिए, हो सके तो नारियल पानी, छाछ और जूस पिए, जिससे शरीर में दूध ज़्यादा हो सके। और हाँ, याद रखें, भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, दलिया, दालें और मौसमी फल अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा दूध, दही और दूध से बने खीर भी आप खा सकती हैं। हो सके आपको ये चीज़ पसंद ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाएं, जो ताकत और शरीर को रिकवरी करने में मदद करते हैं। तो बहनों, ध्यान रखें, माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान माना जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है, जिससे दस्त, कान के संक्रमण और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों कम होती है। साथ ही दिमाग का विकास होता है। बड़े होने पर बच्चे को मोटापा और मधुमेह जैसी समस्याओं का भी खतरा कम रहता है। इससे माँ को भी स्तन कैंसर का भी खतरा कम रहता है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर इससे पहले सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: 70 से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। श्रोता बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी तो है ही, स्तनपान कराना माता के लिए भी फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जमुरद परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481। हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 2 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। वार्ताकार है हमारी रेडियो सखी लालती कुमारी। तो आइए सुनते हैं इनसे वार्ता।
1: नमस्कार बहनों, मैं लालती और आज हम आपसे बातें कर रहे हैं एनीमिया रोग से संबंधित। श्रोता बहनों, लौह अल्पता से होने वाले एनीमिया को रोकने या उसका इलाज करने के लिए आयरन और विटामिन बी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं, जो आपके शरीर को आयरन को अवशोषित करने में मदद करती है। यदि आपको अपने आहार में पर्याप्त आयरन नहीं मिलता है तो अपने डॉक्टर से आयरन सप्लीमेंट के बारे में पूछें। बहनों, एनीमिया के मुख्य लक्षणों में थकान, पीलापन, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द और तेज दिल की धड़कन शामिल है। श्रोता बहनों, एनीमिया वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें भी जरूरी है। संतरे, अंगूर, नींबू और मंदारिन जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो शरीर को भोजन से आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। बहनों, डॉक्टर अनुशंसा करते हैं कि एनीमिया से पीड़ित लोग प्रतिदिन कम से कम एक संतरा अवश्य खाएं। श्रोता बहनों, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन एनीमिया वाले लोग जरूर करें, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस और अनाज। शरीर में खून बनना तब बंद हो जाता है जब अस्थि मज्जा पर्याप्त रक्त कोशिकाएं बनाना बंद कर देते हैं, जो एक गंभीर स्थिति होती है जिसे ओप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। यह स्थिति तब होती है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अस्थि मज्जा पर हमला कर

0: होती है, जिससे वह आवश्यक रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स नहीं बना पाता है। बहनों, शरीर में खून नहीं बनने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें आयरन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, गंभीर संक्रमण, पुरानी बीमारियां या वंशानुगत रक्त कोशिका शामिल है। बहनों, शरीर में खून नहीं बनने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें आयरन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, गंभीर संक्रमण, पुरानी बीमारियां या वंशानुगत रक्त विकार शामिल है। विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्वों की कमी एनीमिया का कारण बन सकती है। गंभीर संक्रमण या सूजन शरीर की रक्त कोशिका उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ रक्त विकार जैसे थैलेसीमिया या सिंकल सेल एनीमिया जन्म से ही होते हैं और रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बहनों एनीमिया से बचने का भरपूर प्रयास आवश्यक है।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय था एनीमिया रोग से संबंधित जानकारी दे रही थी लालती कुमारी। बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

वहनों, फिल्म संगीत के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में। तो वहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। तो चलिए आज हर दिन कुछ खास में आज कुछ खास चीज़ें बनाती हूँ। मैंने सुबह की भाग दौड़ में जब समय कम हो और कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो ये रेसिपी आपकी काम आएगी। चलिए जानते हैं कैसे। बहनों, मात्र 5 मिनट में आप ये रेसिपी तैयार कर सकती हैं। जी हाँ, गेहूं के आटे और ताज़ी सब्जियों से आप बना सकते हैं स्वादिष्ट और पौष्टिक भावरा। बहनों, ये झटपट बनने वाला नाश्ता है, न केवल आपका समय बचाएगा बल्कि स्वाद और सेहत के लिए भी परफेक्ट है। दोस्तों, बच्चे के टिफिन और ऑफिस की जल्दीबाजी में ये खाना बहुत ही लाजवाब और परफेक्ट बनेगी। जी हाँ, ऑफिस की जल्दीबाजी के लिए ये सबसे बेस्ट हो सकता है, तो आज ही अजमाए। सखी बहनों, सुबह का समय किसी जंग से कम नहीं होता है, किसी युद्ध से कम नहीं होता है, खासकर तब जब अलार्म बजने के बावजूद आपकी नींद देर से खुले। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एक ऐसा नाश्ता तैयार करना जो पौष्टिक भी हो और झटपट में बन जाए। अगर आप भी अक्सर सुबह लेट से उठती हैं तो आपके लिए भी ये बहुत काम कर सकती है। तो चलिए आज बनाती हूँ गेहूं के आटे और ढेर सारी सब्जियों से भावरा। बहनों, आपकी मदद, ये समय के साथ आपकी मदद भी कर सकती है। ये न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि फाइबर और विटामिन्स में भी भरपूर है। बहनों, बिना किसी तामझाम के तवे पर मात्र 2 मिनट में तैयार की जाने वाली ये रेसिपी है। ये रेसिपी आपके सुबह के तनाव को कम कर देगी। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका। सामग्री है गेहूं का आटा 1 कप मुख्य आधार के लिए, बेसन 2 बड़े चम्मच बेहतर ब्राइंडिंग और स्वाद के लिए, पानी आवश्यकता अनुसार घोल तैयार करने के लिए, सब्जियां बारीक कटी हुई, 1 बड़ा प्याज, 1 शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई

गाजर और थोड़ी सी पत्ता गोभी। इसके बाद हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, मसाले 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार थोड़ी सी अजवाइन, पाचन के लिए ये बहुत अच्छा होता है, और स्वाद अनुसार नमक, ताज़ा हरा धनिया थोड़ी सी बारीक कटा हुआ, तेल या घी सेकने के लिए। सब्जियों का मिश्रण तैयार करें। सबसे पहले एक बड़े मिक्सिंग बाउल में गेहूं का आटा और बेसन छान ले। अब इसमें सभी बारीक कटी हुई सब्जियां और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। अब घोल तैयार करते हैं। अब इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और अजवाइन मिलाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रहे कि घोल ना तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। इसमें गुठलियाँ भी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दे ताकि सब्जियाँ थोड़ी पानी छोड़ दे, और आटा में सेट हो जाए। उसके बाद तवा गर्म करें। अब एक नॉन स्टिक तवा या लोहे का तवा मध्यम आंच पर गर्म करें। उस पर थोड़ा सा तेल या घी लगाकर चिकना कर लें। अब तवे पर जो हमने घोल तैयार किए हैं उसको डालेंगे, और ध्यान रखें तवे के बीच में डालें और हल्के हाथों से बाहर की ओर फैलाएं। इसे बहुत ज़्यादा पतला ना करें क्योंकि सब्जियों के कारण ये थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। और ध्यान रखें बनाते समय किनारों पर 1/2 चम्मच तेल डाले। जब निचली सतह सुनहरी और कुरकुरी हो जाए तो इसे सावधानी से पलट दे, साथ ही दूसरी तरफ से भी हल्का दबाव देते हुए सुनहरा होने तक सेके। अब आप गर्मा गर्म सब्जियों से भरपूर भावरा तैयार है। इसे आप पुदीने की चटनी के साथ भी आप खा सकती हैं और अपने परिवार को खिला सकती हैं। आप चाहे तो आम के अचार के साथ भी आप लोग खा सकते हैं, या फिर आप इसे दही के साथ भी आप खा सकते हैं। ये झटपट बनने वाला ये नाश्ता है। तो बहनों, अब ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आपको भी अपनी आवाज़ में 3 से 5 मिनट का ऑडियो बनाकर आप भेजना चाहती हैं तो हमें पत्र के माध्यम से भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। तो अब हमारा समय सीमा यहीं समाप्त हो रही है। फिर मिलेंगे इसी समय अगले अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार बस कुछ ही देर में।
1: साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है, एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहाँ के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य।

0: का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद दोपहर के 1:15 पर। दोपहर के 2 बजे आप सुनेंगे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, हमारे पटना केंद्र से ही प्रसारित किया जाएगा।

देश दुनिया की आप खबरें सुनेंगे दोपहर समाचार में, हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और दोपहर के 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम का वक्त है दोपहर के 3:00। आज आप सुनेंगे आशा भोसले के स्वर में मराठी गीत। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5:00 आप सुनेंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी। चर्चा का विषय होगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत और शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों के कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण किया जाएगा। आज चर्चा का विषय है गांव की सफाई, नैतिक जिम्मेदारी की पहचान और चर्चा होगी विश्व स्तनपान सप्ताह के विषय में।

शाम 6:55 पर आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी, किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी भाग एक। रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में, और रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि के 8:30 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम, और रात्रि के 9:30 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम सुनेंगे साहित्य भारती। साथ ही साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे रात्रि के 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। अब आइए श्रोताओं, एक साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय में आपको सूचना दे दें। श्रोताओं, स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी तो है ही, साथ ही साथ स्तनपान कराना माता के लिए भी फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जुरमुद परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर है 0627222481। हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 2 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का, यानी फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलते हैं इस सुरीले सफर पर कार्यक्रम आपकी पसंद के साथ, आपकी रेडियो दोस्त चंदना को लेकर। नमस्कार श्रोताओं, आज शनिवार है और मैं आपकी रेडियो दोस्त चंदना आप सभी को सावन की पहली फुहार के साथ आपके

पसंदीदा गीतों के साथ मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ और साथ ही साथ आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम आपकी पसंद में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज इस सुरीले सफ़र का इस प्यारे से गीत के साथ जो कि आए हैं फिल्म आई मिलन की रात से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की। इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं शुभंकरपुर दरभंगा से मिट्ठू जी, रंजना जी, चंचल जी, राजेश जी, अनिकेत, शालू, साक्षी, अनमोल, बाबू, मिष्टी और मौली। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं ताज आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब शाबिर राही, मेहराज जहां। इसी गीत को सुनना पसंद किया है बुरसारा नायला से प्रमोद कुमार शाहू, भीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु शाहू। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं पुणे से महेश हजारे, मितांशु हजारे, आदित्य हजारे और महाराष्ट्र से बसंत जी हजारे, आमोद हजारे। तो आइए सुनते हैं आपकी ये पसंद फिल्म आई मिलन की रात से।

श्रोताओं, सावन चढ़ चुका है और सावन के मौसम में बारिश के बूंदों के साथ मन पसंदीदा फिल्मी गाना सुनना एक अलग ही खुशी और एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। तो आज जो भी मेरे पास पत्र आए हैं, पसंद आए हैं, आई हैं, तो उन सभी पत्रों में, खतों में ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं ने सावन के गीतों को ही पसंद किया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सावन के इस मौसम में सारे लोगों ने सावन के ही गीतों को पसंद किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ये अगला गीत फिल्म आया सावन झुमके से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल आवाज़ में। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं बेडी से हुकुम कर्माकर, सुनीता कर्माकर, हार्दिक कर्माकर, प्राची कर्माकर, तनु कर्माकर, रामपट्टी गौसानगर से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, जगदम्बे प्रसाद। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं पुणे से पंकज

बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी वो कौन थी, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज़ में। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे थे लंगड़ा चौक झंझारपुर से हरेराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी, पटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रूबीना परवीन, अरहान बाबू, हमजा बाबू, सुमेरा नाज, हुमेरा नाज, अहिबा नाज, साजिया शाही नाज, नाजिया नूरी नाज। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद किया था लाल पोखर दरभंगा से मोहम्मद कलीम दीवाना, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अमन, मोहम्मद फराज, मोहम्मद उमाज, सोनी बेगम, खुशी परवीन, शास्ता परवीन, समा परवीन, डोली परवीन और मेहरा परवीन। तो श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा फिल्म लम्हे से। आवाजें हैं एला अरुण और लता मंगेशकर की। और इस प्यारे से गीत को सुनना चाह रहे हैं छत्रपति सांभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, डॉक्टर रमेश कुमार जाजुरिया, गीता रानी जाजुरिया।

या गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, ये हैं पटेल नगर मलोट पंजाब के श्रोता। इनामत टोल भगवतीपुर पंचायत के श्रोता नीतू सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या, सुधा, विभा, ज्योति, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी और एस के सहनी। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा तेतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी ठाकुर, सूरज और सुजला ठाकुर, ज्योति और रियाज ठाकुर। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म लम्हे से।

फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का सा ये गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटिकर की आवाज में इसे सुनना पसंद कर रहे थे। ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकालपुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिलोटकर। बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गोवेनकर, धीरज सरवस्तरी। जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, फिरोज आलम।

वैष्णवी डोमने चंचल डोमने अर्जुन गवेनकर धीरज सरवस्ती जतुका किशनपुर से आलम दिलकर शवाना नाज रिजवान राही इमरान रजा आलम शेख फिरोज आलम और चांदनी नाज। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद किया था रंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म 100 डेज से SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में। और इस प्यारे से गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं नाहर मंटोला से भाई कादिर अली जाकिर अली हमीद अली जाबिर अली मोहम्मद अरमान मोहम्मद सलमान। कनेरा मोहल्ला पटियाला बत्ता परिवार से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता पलक नितिन करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद किया है कुशेश्वर स्थान से सलमगढ़ से मोहम्मद इशाज शबीना नाज मोहम्मद इरफान आजाद मुस्तफ़ा आफ्ताब सगुफ्ता परवीन शाहीन परवीन नेमत परवीन रौनक परवीन सुमैया परवीन सना अफरीन सादिया नूर और आरिश भाबू। साथ ही साथ भाई जगनारायण मुखिया तथा खुशी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मिक्का वेणुधर बिरक चैतक बिरक और मिक्का बिरक। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे अरुण कुमार धनजे विशाल कुमार धनजे शीला धनजे खुर्दीपुर मानपुर से विजय वैद रानी वैद महिमा वैद नीतू वैद और बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया रानी नीताराज गरिमा राज अभिषेक कुमार और अविनाश कुमार अमरेंद्र साथ में वंश प्रसाद चांदूर विश्वा तालुका नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाव खड़ से रक्षा ताई खड़ से ललिता संजना खड़ से गणेश और कार्तिक खड़ से लाली मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म 100 डेज।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब स्टूडियो की घड़ी भी मुझे इशारे कर रही है कि इसी गीत के साथ अपने श्रोताओं से विदा ले लो। श्रोताओं, हमारे पास ढेर सारे पत्र आते हैं और हमारी तह दिल से ये इच्छा होती है कि मैं हर पत्र को पढ़ूं और उनके पसंदीदा गीतों को सुनवाऊं, परंतु हमारे स्टूडियो की घड़ी की जो पाबंदी है वो हमारे हाथों को रोक लेती है, इसलिए हम हर पत्र को शामिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग हमें इसी तरह से अपने पत्रों के माध्यम से अपना प्यार हमें भेजते रहें और हम आपको सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों को। हमारा पता तो आपको याद ही होगा, हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा बिहार, पिन कोड है 8460004।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ दीजिए अपने रेडियो दोस्त चंदना को। अगले हफ्ते इसी दिन फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ। तब तक दीजिए अपने इस रेडियो दोस्त को विदा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। हमारे दिल्ली केंद्र से हमारे

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत देश भर में 10,000 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी की है। घटी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के अनुसार व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत पटना में 3,227 रुपए से कम होकर 3,000

0: 18 रुपए हो गई है। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में संशोधन किया है। शिक्षा विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार सरस्वती विद्यानिकेतन मॉडल विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को अब वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग नहीं रखा जाएगा। इसके लिए 21 जुलाई को जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि पूर्व अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के अंतर्गत मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 15,000 रुपये तथा फोकानिया प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इस अवधि में किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। औरंगाबाद जिले ने राज्य में मेडिकल टेली कंसल्टेशन सेवाओं में एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग की जुलाई महीने की रैंकिंग में जिले में 48,438 टेली कंसल्टेशन दर्ज किए गए। इससे पहले जून माह में भी जिला 44,042 टेली कंसल्टेशन के साथ पहले स्थान पर रहा था। आज असहयोग आंदोलन दिवस है। वर्ष 1920 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जन जन का आंदोलन बना दिया था। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हो गया है। प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक यह सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रदेश भर में स्वास्थ्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श शिविर और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नगर निकाय में काम करने वाले सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। हड़ताल के चलते गली मोहल्लों में कचरे का अंबार दिखने लगा है। इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि सफाई कर्मी अपनी नौकरी स्थायी करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

रोजगार सूचना में आज लेखा प्रशिक्षक एवं सहायक 2026 कुल पद 1829 आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026 तक न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुल पद 395 आवेदन शुरू होने की तिथि 21/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026 तक न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में LOB लोकल बैंक ऑफिसर का कुल पद 545 आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 9/8/2026 तक न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in में जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च IGCER कुल पद 200 आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 तक न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन SSC मेट्रिकुलेशन 10th पास किसी भी यूनिवर्सिटी से या IIT पास NCVT या SCVT। अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। NFR रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 कुल पद 6777 आवेदन शुरू होने की तिथि है 20/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष ऑफिशियल वेबसाइट www.nfr.requirement.in पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कुल पद 163 आवेदन शुरू होने की तिथि है 22/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 10/8/2026 तक न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के रोजगार सूचना में इतना ही।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम

0: जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची

0: के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और खोर्धा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम

0: में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में अवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आरडी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात किशोरदा उस वक्त जिंदा थे
0: और आरडी बर्मन साहब थे,
1: आरडी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के, बोले नहीं नहीं, नहीं, नहीं। चंद साहब के लड़के बहुत बड़ा, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आया, इतने में अमित नहीं जाएगा। तो उनको बोला देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो, टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं, नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए, और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही।
1: और उसके बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही
0: जी,
1: तो जिसका वो गाना था हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर
0: जी,
1: और नीरज साहब के साथ में पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई, विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था जान।

0: जाना।
1: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा, फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहां जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के साथ की मैंने सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
2: किस्मत,
1: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
2: गीतकार माया गोविंद के साथ आपने काम किया है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
1: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
2: रानी मलिक थी जी,
1: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
2: बहुत सुंदर गाना,
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ पहला गाना था।
2: अच्छा।
1: इससे पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे लादी रिया तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
2: वो ये था। हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का, आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा?
1: नहीं, वो गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है, तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया, और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
2: जी जी जी, तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम।

0: मेरे नू।
1: क्या बात है,
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए, आए हम तो सबको गले लगाए, हमें ना कोई अपनाए, हाय।

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा
0: जी।
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी,
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहां दिल में नहीं लगोगे।
0: सही।
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है
0: जी, जी।
1: तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूं कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूं कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूं, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते।
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण,

0: अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
1: अनुराधा जी, अलका याग्निक,
0: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मनर अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट, जॉली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पेमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
1: पूर्णिमा के नाम से हैं
0: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं
1: जी,
0: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
1: नहीं नहीं वो बात नहीं,
0: वो रिस्पेक्ट, उनको पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट,
1: और
0: कि यार वहां जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना,
1: और कला के प्रति समर्पण,
0: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं
0: जी, बिल्कुल सुनिए।
1: कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
1: तुझे चाहना मेरा काम है, फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है दिलीप सेन साहब जी, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है और
1: नहीं, हम केसर सेन की औलाद हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में, लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है
0: जी।
1: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सू आयो विनायक, करो ये न सीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके जॉइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं, मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे के
0: कई गीतों में आपने ही प्रयोग किया?
1: नहीं, मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी,
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, मैं किया ते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे अडॉप्ट किया उस गाने को, हम मेरी चोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करू ना। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
0: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वो
1: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशा साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक चुने के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहां हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वेराइटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए, आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले नहीं यार ये दिलीप सेन जा रहा है, ये नहीं, अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं, आपके नाम

0: के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: जी तब लगेगा जब जी वाला काम दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते।
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी एक पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में मिला, इसके बारे में हम जानना चाहते।
1: देखिए, दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी,
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक।
0: अच्छा,
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी,
1: संगीत
0: जी,
1: में रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है।
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आई गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी
1: आने वाले हैं अभी जल्द जी
0: जी। तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और आपके परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए, इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो आज लुत्फ होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए, कविताओं की मालूमात रखनी चाहिए, भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तरफुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 रागे हैं या 50 रागे हैं या बेसिक 2-4-5, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो 4-5 रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कोर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए,
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है
0: जी,
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है, प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम।

युवा दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कार्यक्रम में चर्चा यदि प्रकृति से करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि प्रकृति जो है हमसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। यदि प्रकृति है तो हम हैं। आपको ये भी बताते चलें कि कार्यक्रम में यानी ठीक शाम 5:10 पर इसी विषय को लेकर यानी प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पर हम आपको चर्चा सुनवाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो आइए पहले बातचीत को आगे बढ़ाएं। बेशक दोस्तों, प्रकृति और मनुष्य का संबंध जो है बहुत गहरा और अटूट है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है और ये हमारे अस्तित्व का आधार है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और जंगल, ये सभी प्रकृति के अंग हैं जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। प्रकृति के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि ये हमें न केवल भोजन और आश्रय देती है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करती है, है ना? दोस्तों, प्रकृति एक छोटा सा शब्द है, पर इस शब्द में कितना कुछ समाया हुआ है ये हमारे सोच के पड़े है। हम स्वयं ही प्रकृति का एक छोटा सा उपादान है। हम प्रकृति के इन अवयवों यानी वायु, पानी, मिट्टी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, नदियां आदि के सहारे ही जी पाते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, और ऐसे में यदि बारिश कुछ एक दिन नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं

कि आपको कैसा लगता है। दोस्तों, प्रकृति से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, पीने के लिए पानी और भोजन प्राप्त होते हैं। इसमें होने वाले परिवर्तन हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति हमें शारीरिक सुख सुविधा के साथ साथ मानसिक सुख भी देती है, पर हमारे पास प्रकृति को देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। यदि कुछ है तो सिर्फ इतना कि हम प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें। और ऐसे में आप युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, बातें समय रहने पर और भी करेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक देवी गीत।

0: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
3: तो युवा दोस्तों, कार्यक्रम अभी जारी है। अब आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। तो चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो।

0: और इस महीने का अपना खास महत्व होता है। सावन के मास में बहुत सारे तीज त्योहार भी पड़ते हैं और लोग भक्ति भी करते हैं, खास करके जो सावन के सोमवार होते हैं उनका अपना अलग महत्व होता है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो मौसम होता है ना, पेड़ लगाने के लिए बड़ा अनुकूल होता है। तो आप कोई पेड़ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में तो पेड़ बहुत ही अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, और शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास यानी सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और समर्पित महीना है। इस महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और सोमवार के व्रत रखने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
0: और इसके साथ ही नीलम बहन, सावन के महीने में गीत सुनने का भी अपना ही अलग आनंद होता है, और खास करके श्रावण के मास में जो है मल्हार लोग ज्यादा सुनते हैं। तो आइए एक मल्हार सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं। कलाकार हैं जयप्रकाश शर्मा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभी ये मल्हार और कलाकार थे जयप्रकाश शर्मा।
1: तो नीलम बहन, इस मल्हार से पहले आप बता रही थीं कि जो सावन महीने का अपना धार्मिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है, तो पौराणिक कथा के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र का मंथन हुआ था और मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था और विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और तभी से सावन महीने में जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई।
0: बिल्कुल, और श्रावण मास में माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या भी की थी और शिव ने उन्हें दर्शन दिए। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और उपवास किया जाता है और शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल लाकर शिवालयों में शिव जी का जलाभिषेक करते हैं।
1: बिल्कुल, तो नीलम बहन बात भगवान शिव की हो रही है, तो इसी क्रम में अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक मल्हार कलाकार हैं सुभाष नाथ और उनके साथी।
2: नदिया पे

0: मल्हार के कलाकार थे सुभाष नाथ और साथी।
1: नीलम बहन, सावन का महीना तो है ही है, साथ ही साथ ये अगस्त का भी महीना है और हम सभी जानते हैं कि अगस्त का महीना ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास है। इसी महीने की 15 तारीख को सन 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था।
0: बिल्कुल, और अगस्त के महीने में ही सन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगस्त का महीना राष्ट्रीय गौरव से भरा हुआ है। इस महीने में देश की आजादी का जश्न मनाने के साथ साथ कई महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर बलिदानियों को याद किया जाता है। तो इसी क्रम में नीलम बहन अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं ऋषिपाल चौहान और मनशाराम चौहान।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। कलाकार थे ऋषिपाल चौहान और मनसा राम चौहान।
1: और इसी देशभक्ति गीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम राम, राम।

0: अभी आप लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेलों का आईना।
2: जीत का जज्बा, हार सी सीख और हर मुकाबले के पीछे छिपी मेहनत। खेल की दुनिया की ऐसी ही हर बड़ी कहानी लेकर हाजिर है खेल खिलाड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रतीक।
3: नमस्कार।
2: आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ताजा हलचलों की, आगामी हॉकी विश्व कप पर करेंगे विशेष बातचीत, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, साथ ही ताइपे ओपन बैडमिंटन, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, खेलो इंडिया योजना, डूरेंट कप और खेल जगत की अन्य अहम खबरें भी रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से, जहां भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। खेलों की असली खूबसूरती केवल जीत में नहीं बल्कि उस जज्बे में होती है जिसके साथ खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का स्वर्णिम अभियान लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10वें दिन की शुरुआत ही भारत के लिए शानदार रही है। मुक्केबाजी से लगातार 2 स्वर्ण, एथलेटिक्स में डबल पोडियम और पदकों की झड़ी। ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर तिरंगे की शान बढ़ा दी है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से आज एक के बाद एक शानदार खबरें सामने आई हैं।
4: We have a unanimous decision. The winner in the blue corner.
2: प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को हराकर भारत को मुक्केबाजी का पहला स्वर्ण पदक दिला दिया। इसके कुछ ही देर बाद जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीत लिया। मुक्केबाजी में भारत का ये दूसरा गोल्ड है और इसके साथ ही भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 7 हो गई है। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जादूमणि सिंह को ऑस्ट्रेलिया के जाय डिकिंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जादूमणि ने रजत पदक अपने नाम किया। हालांकि स्वर्ण से चूकने के बावजूद उनका ये प्रदर्शन भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण पदक लेकर आया। एथलेटिक्स से भी भारत के लिए दोहरी खुशी आई है। पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत ने शानदार डबल पोडियम फिनिश हासिल किया। प्रवीण चित्रोवेल ने 16.58 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता, जबकि सेल्वा प्रभु ने 16.52 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। एक ही स्पर्धा में भारत के 2 खिलाड़ियों का पोडियम पर पहुंचना भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इन शानदार प्रदर्शनों के

0: बाद भारत के खाते में अब 31 पदक हो गए हैं। इनमें 7 स्वर्ण, 15 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय दल लगातार पदक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और आगे आने वाले मुकाबलों में पदकों की संख्या और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। हालांकि दिन की शुरुआत कुछ निराशाजनक परिणामों के साथ भी हुई। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में प्रियंका ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4th स्थान हासिल किया, लेकिन वे पदक से चूक गईं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी रवीना को तकनीकी कारणों से अयोग्य घोषित कर दिया गया। पैरा एथलेटिक्स की पुरुष 1500 मीटर T54 स्पर्धा में रमेश शम्मुगम 7वें स्थान पर रहे और पदक हासिल नहीं कर सके। उधर ट्रैक साइकिलिंग के पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह और रोजित सिंह अगले दौर में क्वालिफाई नहीं कर सके। 10वें दिन के मुकाबले अभी लगातार जारी हैं और कई बड़े पदक मुकाबले के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं 9वें दिन के उन शानदार प्रदर्शनों पर जिन्होंने भारत के अभियान को एक नई रफ्तार दी। सबसे पहले बात जूडो की, जहां भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग
1: तो दोस्तों ये वो वाणी कार्यक्रम अभी जारी है। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम प्रकृति के साथ किए थे। बेशक प्रकृति का सीधा सीधा संबंध हम आपसे है और ऐसे में हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी बिल्कुल आपके अनुकूल हो, आप स्वस्थ रहें तो स्वाभाविक है। प्रकृति के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अभी बरसात का मौसम है, आसपास पेड़ पौधे लगाएं ताकि वातावरण जो है वह स्वच्छ रहे, ताजी हवा आपको मिल सके। बातें आगे भी करेंगे, फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के लिए युवावाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। डीजे पेश है फिल्मी गाने।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे हैं नए गाने। फिल्म लम्हा में अभी आप सुन रहे थे पलाश सेन को, गीतकार थे अमिताभ वर्मा, संगीतकार मिथुन। लीजिए पेशे पुलिस गिरी फिल्म का ये गाना पलक मुच्छल और यशराज कपिल की आवाजों में, गीतकार शब्बीर अहमद, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

अभी आप सुन रहे थे लैला मजनू फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार थे इरशाद कामिल, संगीतकार नीलाद्री कुमार। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। शाम के 6 बजा चाहते हैं, अब हिंदी में समाचार होंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
2: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
2: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,000

19 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉर्ट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति की दो का कार्यक्रम। संध्या 6:25 पर मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे। ग्रामीण भाई गांव घर में आज सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान शाम 6:30 पर। किसान वाणी कार्यक्रम हम अपने पटना केंद्र से रे लेकर आप तक पहुंचाएंगे संध्या 6:55 पर। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे रात 8:15 पर। कुछ लोकगीत सुनिएगा रात 8:30 पर। रात 9:30 पर साहित्य भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

कल प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम। सुबह 9:10 पर उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे। बच्चों के लिए फलवारी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दिन में 10:30 पर। दिन में 11:00 आप सुनेंगे फोन इन पर आधारित हेलो जिंदगी। विषय होगा स्तनपान के फायदे। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर जमुरद परवीन। समय याद रखें कल दिन में 11:00। महिलाएं अपना कार्यक्रम सखी बहन सुनेंगी दोपहर 12:00। 12:30 पर आप सुनेंगे मैथिली नाटक गुरुआइन। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी अनुरोध पर आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर।

दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। स्वर सहयोग, परिकल्पना और प्रस्तुति मितेश कुमार मिश्रा की होगी। समय याद रखें, कल दोपहर 2:30 पर। कुछ विद्यापति गीत सुनिएगा अपराह्न 3:00। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:00। कार्यक्रम के आरंभ में आप सुनेंगे चंद गजलें। कुछ विद्यापति गीत सुनिएगा 6:10 पर। 6:25 पर मैथिली संवाद प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल आप सुनेंगे। 6:30 पर गांव घर कार्यक्रम के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा 7:00। खेल गतिविधि पर आधारित क्रीड़ा जगत आप सुनेंगे 8:15 पर। 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

विद्यापीठ गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होते ही आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मैथिली संवाद थोड़ी देर में।

0: सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहां
1: संबंधित जिला सभा प्रभारी मंत्री से शामिल है। रेलवे पूर्व मध्य द्वारा दानापुर खंड पर 976 करोड़ रुपया लागत से 29 किलोमीटर लंबा मल्टी ट्रैक परियोजना के मंजूरी देल गेल। एकर तहत एक खंड पर 3 आ 4 रेल लाइन बिछाल जायत। रेल मंत्रालय द्वारा कहल गेल जे एही परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंड सब में से एक पर भीड़ कम होयत और यात्री तथा माल ढुलाई सेवा सब में वृद्धि होयत। मंत्रालय द्वारा कहल गेल जे परिचालनक पहिल वर्ष में एही परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकत। ऐसा प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई के क्षमता से हो बढ़त। तेल कंपनी द्वारा व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरक दाम में 192 टाका कमी कैल गेल। ई दाम आई से लागू भ गेल अछि। इंडियन ऑयलक वेबसाइट पर जारी रेल लिस्टक अनुसार व्यवसायिक सिलेंडरक दाम पटना में 3,227 टाका से कम भकर 3,018 टका आब भ गेल अछि। आयकर विभाग द्वारा कहल गेल जे वर्ष 2026-27 लेल 31 जुलाई 2026 धरि 5 करोड़ 90 लाख सँ अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कैल गेल। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाता सबके धन्यवाद दैत विभाग द्वारा कहल गेल जे हुनक विश्वास आ समय पर अनुपालनक भारतक विकास के गति देवला ऊर्जा प्रदान करैत अछि। राज्य सरकार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में संशोधन कैलक अछि। शिक्षा विभागक नव अधिसूचनाक अनुसार सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालय सब में प्रतिनियुक्त शिक्षक सब के आब वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया सँ अलग नहि राखल जायत। एकर लेल 21 जुलाई के जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधान सब के शिथिल कऽ देल गेल अछि। शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट कैल गेल अछि जे पूर्व अधिसूचनाक अन्य सब शर्त यथावत लागू रहत। प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति के तेसर चरण TRE3 के तहत नियुक्त शिक्षक सभक शैक्षणिक प्रमाण पत्र सभक जांच शुरू भ

0: बघेल शिक्षा विभाग सब जिला सबके राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS सँ 18 महीनाक DLED प्रशिक्षण प्राप्त कऽ कऽ नियुक्त भेल शिक्षक सभक विवरण उपलब्ध करेबाक निर्देश देलक अछि। विभागक अनुसार नियुक्ति विज्ञापन और नियम सभक अनुसार NIOS के 18 मासक DLED विद्यालय अध्यापक पद लेल मान्य अर्हता नहि अछि। जांच पूरा भेलाक बाद नियमानुसार आगाँ कार्रवाई कयल जायत। मधुबनी जिला में केंद्रीय विद्यालयक संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 सँ शुरू होयत। केंद्रीय विद्यालय संगठन एहि संबंध मे आदेश जारी कऽ देलक अछि। विद्यालयक संचालन फिलहाल SNSDNG वॉटसन प्लस टू स्कूल कचहरी रोड मधुबनी के अस्थायी भवन सँ कयल जायत। प्रारंभिक चरण में बाल वाटिका 1 सँ कक्षा 5 धरि एक एक सेक्शन में पढ़ाई होयत। बाद में आवश्यकता आ स्वीकृति के अनुसार कक्षा सबक विस्तार कयल जायत। आई सँ विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू भ गेल अछि। प्रत्येक वर्ष 1 सँ 7 अगस्त धरि ई सप्ताह मनाओल जायत अछि। एकर उद्देश्य शिशु सब लेल स्तनपानक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाएब तथा माता सब के स्तनपान लेल प्रोत्साहित करब अछि। एहि अवसर पर प्रदेश भर में स्वास्थ्य संस्थान सब में जागरूकता कार्यक्रम परामर्श शिविर आ जन जागरूकता अभियान आयोजित कयल जा रहल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए गांव घर कार्यक्रम।

0: गाम घर कार्यक्रम के अंतर्गत झरोखा सुनने वाला सब श्रोतागण के मिहिर कुमार झा के नमस्कार स्वागत अभिनंदन। श्रोता लोकन आज शनि अछि, आजुक दिन झरोखा कार्यक्रम के अंतर्गत अपना सब मैथिली लोकगीत सुनब, किछ आपस में गपशप करब, संगे एक गोट प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सेहो सुनब, मुदा पहिने थोड़े गपशप आपस में तत्क्षण। श्रोता लोकन अपना सब जनै छी जे भारत गाँव के देश अछि, भारतक आत्मा गाँव में बसैत अछि, ई कही तो कोनो अतिशयोक्ति नहीं। भारत माता ग्रामवासिनी छथि, एहन जे अपन सभक देश भारत जकरा अपना सभक गामक देश कहै छी, ओहि गामक सफाई, ओकर आबोहवा, नीक वातावरण होय, एहि सब तरहक जिम्मेदारी तऽ अपन सभक गामक निवासी जे छथि हुनके ने पूर्णतया ई जिम्मेदारी छनि। श्रोतागण अपना सब जनै छी जे अपन सभक जीवन में साफ सफाई के कतेक महत्व अछि, साफ सुथरा रहब तऽ स्वस्थ रहब, प्रसन्न रहब, एतबे नहि सफाई में माँ लक्ष्मी के निवास सेहो कहल जाय छै। तैं ने अपना सब लक्ष्मी पूजा अर्थात दियावती के सकरो साफ सुथरा करै छी, कियाक तऽ दियावती के माँ लक्ष्मी के दिन छनि, साफ सुथरा रहत तऽ माँ लक्ष्मी हमरा घर में एतै, आ माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेती तऽ आजुक दिन एहि लेल अपना सब दियावती में साफ सुथरा करै छी। आ कहलो गेल छै जे अर्थ प्रधान देश आजुक युग के कहल गेलै। श्रोता लोकन साफ सुथरा गाम रहत तऽ शुद्ध वातावरण रहत, शुद्ध वातावरण रहत तऽ मोन प्रसन्न आ स्वस्थ रहत, साफ सफाई से बीमारी कम होयत, मोन स्वस्थ रहत, शरीर स्वस्थ रहत तऽ नीक आ सकारात्मक विचार रहत, जैसे सब केओ प्रसन्न भऽ कऽ एक ठाम नीक जकाँ रहब। तऽ चर्चा पुनः समयानुकाल हेतै, एकटा छोट छिन विराम सुनै छी।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीक

0: कि अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता लोकन, अखन अपना सब विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक सब बरख मनबैत छी। एहि विश्व स्तनपान सप्ताह मनबैक मुख्य उद्देश्य अछि जे नेना जे शिशु नवजात छथि हुनका स्वास्थ्य के लेल माँ के दूधक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ायब। ई जे विश्व स्तनपान सप्ताह अपना सब मनबैत छी, ई एकरा जे छै WHO आ यूनिसेफ सनक संगठन के समर्थन सेहो प्राप्त अछि। श्रोतागण, अपना सब जनै छी जे माँक दूध नवजात नेना लेल संजीवनी बूटी के काज करैत अछि। नवजात नेनाक लेल माँक दूध बड़ बेसी लाभकारी होइ छै। समयानुकूल श्रोतागण, अपना सब पुनः गप करब। एकटा अखन सुंदर सन मैथिली गीत सुनै छी, तऽ सुनी ई गीत।
0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

हाँ, अखन अपना सब अरविंद कुमार झा आ ओम प्रकाश सही सुंदर सन गीत सुने छलौं। श्रोतागण, आप प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान के समय भ रहल अछि, तो सुनू ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
1: श्रोताओं, आपने अक्सर इस बारे में अपने आसपास के गांव, शहर में सुना होगा। घरेलू हिंसा का मतलब है हमारे घर या पड़ोस या कहीं भी किसी औरत के साथ मारपीट करना या उसको शारीरिक व मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाना। यह एक बहुत ही घिनौना अपराध है जो आजकल हमारे समाज में बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। आज का नाटक इसी विषय पर आधारित है। यह नाटक एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ के मर जाने के बाद उसके पिता उसकी शादी एक बहुत ही ज्यादा उम्र के आदमी के साथ करा देते हैं। उसके बाद वह लड़की कैसे शारीरिक व मानसिक रूप से घरेलू हिंसा का सामना करती है और कैसे इस लड़ाई को जीत लेती है, आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
2: अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो यह स्थिति ना होती। मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी और खुद से ज्यादा मेरी परवाह भी करती थी।
3: कोमल, ओ कोमल, कहाँ है तू? दरवाजा तो खोल, स्कूल नहीं जाना क्या? कितने दिन हो गए तुझे स्कूल गए हुए?
2: अरे सुमन, तू सब ठीक तो है ना? बहुत दिनों बाद आई है, आओ बैठो।
3: नहीं कोमल, बैठने का समय नहीं है, तुम जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है।
2: सुमन, तुझे तो पता है ना, मेरी माँ के चले जाने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ और मेरे पापा ने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया है।
3: क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तेरा स्कूल जाना बंद क्यों करवा दिया?
2: माँ के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो घर के सारे काम मुझे संभालने पड़ते हैं ना, इसीलिए तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
3: ठीक है कोमल, जैसी तेरी मर्जी, बाय।
1: कोमल सुमन के घर से जाने के बाद बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं जो नशे की हालत में होते हैं। कोमल उनको ऐसी हालत में देखकर डर जाती है और बिना कुछ बोले वापस अंदर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है।
4: कोमल, ओ कोमल, कहाँ मर गई है तू? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे ये लोग ना मेरी सुनते नहीं है, इसकी माँ तो मर गई, अब इसका बोझ भी मुझे उठाना पड़ रहा है।
2: पिताजी लीजिए पानी।
4: रख दे पानी यहाँ पे, और अभी तक खाना नहीं बनाया? भूखा मारने का इरादा है क्या? तू भी अपनी माँ के साथ क्यों नहीं मर गई थी? मैं तो ये दुआ करते उसी दिन मर जाती तू भी।
2: पिताजी आप शराब क्यों पीते हो? आप शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि मैंने माँ को खो दिया है, मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ पिताजी।
4: अरे मेरे सामने जुबान चलाती है? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, चल खाना ला। और सुन, सुबह तैयार रहना, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है?
1: अगली सुबह कोमल को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। जब यह बात कोमल की चाची और चाचा को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि कोमल की उम्र अभी बहुत ही कम थी और अभी उम्र शादी करने की नहीं थी, इसलिए कोमल के चाचा चाची उसके पिताजी के पास समझाने के लिए जाते हैं।
5: राजू कहाँ हो, बाहर आओ, ये सब हम क्या सुन रहे हैं? तुम कोमल बिटिया का रिश्ता कर रहे हो और हमें बताना जरूर।

0: पूरी नहीं समझा।
1: हाँ भाई साहब, आपने हमें बताया क्यों नहीं, और लड़का कौन है और कैसा है, ठीक है या नहीं है, आपने कुछ पता भी किया है या नहीं?
2: अरे इसमें पूछने और बताने वाली कौन सी बात है, मेरी बेटी है, मैं उसके लिए जो भी करूँगा ठीक ही करूँगा ना।
0: फिर भी भाई होने के नाते बता तो देते, और वैसे भी कोमल की उम्र अभी है ही क्या, जो तुम्हें शादी कितनी जल्दी पड़ी है।
1: भाई साहब, हम मानते हैं कि कोमल आपकी बेटी है, उसके पिता आप हैं, पर फिर भी एक चाचा चाची होने के नाते उस पर हमारा भी तो एक हक है।
2: वो तो आपकी बात ठीक है। आइए भाई साहब, आइए अंदर आइए, आपको आते समय कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना?
3: अरे नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। आप सुनिए, सब ठीक तो है ना?
2: हाँ जी सब ठीक है, आइए बैठिए।
4: आप जल्दी से अपनी बेटी को बुला दीजिए, हम भी तो देखें हमारी होने वाली बहू कैसी दिखती है।
2: कोमल बेटा जल्दी बाहर आओ।
4: आओ बेटा आओ, मेरे पास बैठो। भाई साहब, मैं तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो रिश्ता पक्का समझें।
2: हाँ जी बहन जी, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है।
1: भाई साहब, आपको लगता नहीं कि लड़के की उम्र कुछ ज्यादा ही है, और इसकी आंखें और शक्ल कुछ अजीब सी है, और इसकी आंखें कितनी लाल है।
2: भाभी आपको तो हर किसी में कमियां ही दिखती हैं, आपका तो काम दूसरों की कमियां निकालना है।
0: पर राजू भाई, रीना ठीक कह रही हैं, मुझे भी लड़का सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है।
2: आप दोनों तो चुप हो जाओ, लड़का ठीक है और मुझे पसंद है, बात खत्म। मेरी बेटी है तो लड़का भी मेरी पसंद का ही होगा।
3: भाई साहब, अगर आपकी सहमति है तो रिश्ता पक्का समझें।
2: हाँ जी जरूर, मुबारक हो, ये लीजिए मुंह मीठा करो, बधाई हो आपको।
3: आप भी कीजिए।
1: इस तरह कोमल की शादी तय हो जाती है, और कोमल के चाचा और चाची के समझाने के बाद भी कोमल के पिता उनकी नहीं सुनते, और कोमल की शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कर देते हैं। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल चली जाती है।
4: कोमल बेटा, खाना बन गया है क्या? जल्दी से खाना लगा दो, तुम्हारे ससुर जी आते होंगे।
5: जी माँ जी, खाना तैयार है, आप बैठिए मैं खाना लगा देती हूँ।
6: भाभी आज खाने में क्या बनाया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
5: लौकी की सब्जी और चावल, और साथ में रोटी।
6: भाभी यह सब क्या घास फूस बनाया है, आपको पता नहीं है क्या, हमारे घर में ज्यादातर मसालेदार व तली हुई चीजें बनती हैं, और जो आपने ये बनाया है ये तो बिल्कुल फीका है, ना इसमें मिर्च है ना इसमें नमक है।
4: बहू कविता ठीक कह रही है, हमारे यहाँ घास फूस नहीं खाते, क्योंकि हमारे घर में शुद्ध देसी घी में तली हुई चीजें ही और ज्यादातर मसाले वाले व्यंजन ही बनते हैं। तेरे बाप ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या?
5: माँ जी आपको तो पता ही है ना कि मैं तो बचपन से ही बिना माँ के पली बड़ी हुई हूँ, मुझे तो सादा और सिंपल सा खाना बनाना आता है, ये मसालादार चटपटे व्यंजन मुझे बनाने नहीं आते।
4: बहू तुम्हें यहाँ आए हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए, और तुम हमारे सामने जबान चला रही हो, ये घर मेरा है तुम्हारे बाप का नहीं, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे।
5: पर माँ जी,
4: चुप हो जाओ।
7: अरे दरवाजा खोलो, कहाँ मर गए सारे के सारे।
6: भाई आ गए आप, आओ अंदर आओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
7: मुझे भूख नहीं है, कोमल कहाँ है, कहाँ है वो महारानी?
6: सो रही होंगी महारानी, उनको काम ही क्या है। भाभी ने आज मम्मी से भी बहुत बदतमीजी से बात की, मम्मी बहुत उदास है, बोल रही थी कैसी बेकार बहू घर में आ गई है।
7: अच्छा, इस कल की आई लड़की की इतनी हिम्मत होगी जो मेरी माँ को पलट के जवाब देती है, और मेरी माँ को भी रुलाया, अभी बताता हूँ इस महारानी को।
5: आ गए आप, लीजिए पानी पी लो।
7: मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ का पानी।
5: विनोद आज क्या हुआ तुम्हें, आपको पता है आज क्या हुआ, माझी ने छोटी सी बात पर मेरे ऊपर हाथ उठाया।
7: मुझे सब पता है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ इतनी दुखी है और वो रो भी रही है।
5: पर मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा।
7: अच्छा तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरी माँ को झूठी और गलत बता रही हो।
5: मेरी कोई गलती नहीं है।
7: चुप हो जाओ तुम, तुम्हारी जुबान ऐसे बंद नहीं होगी, रुको जरा।
5: आए मर गई मैं तो, माँ मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी,
8: हे भगवान,

0: प्लीज मुझे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो।
1: नहीं नहीं, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आज जो तुम्हारी इस कैंची की तरह चलने वाली जुबान को काट कर फेंक दूंगा।
0: मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे प्लीज।
1: चलो आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा मेरी माँ को कुछ कहा ना तो सच में जान से मार दूंगा तुझे।
2: कोमल सारी रात रोती रहती है और अपने जख्मों को देख देख कर जोर जोर से रोने लगती है, परंतु उसकी रोने की आवाज सुनकर भी कोई उसे देखने के लिए उसके पास नहीं आता और वो ऐसे ही सारी रात अपनी माँ को याद करते रोती रहती है। अगले दिन सुबह हो जाती है पर कोमल अपने कमरे से बाहर नहीं आती, क्योंकि पिछली रात उसके साथ शरीर पर इतने जख्म थे कोमल से ठीक से चला ही नहीं जा रहा था। तभी उसकी सास और उसकी ननद कमरे में आ जाती है।
3: अब उठ भी जाओ, अपनी मरी हुई माँ का बहुत मातम मना लिया, अब जल्दी उठो और हमारे लिए खाना बना दो।
4: हाँ भाभी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मसालेदार बटर नान और दाल फ्राई और पकोड़े बना दो।
5: अरे भाई, आज सुबह का नाश्ता कुछ मिलेगा या ऐसे ही पानी से पेट भरना पड़ेगा? बहू के भी आने का कोई सुख नहीं है, समय पर ठीक से मनपसंद खाना भी नहीं मिल पाता।
0: माँ जी, वैसे मैंने कभी ये सब चीजें बनाई नहीं, ना मुझे किसी ने सिखाया है, पर फिर भी आप सभी की खुशी के लिए मैं बना देती हूँ।
5: बहू, तुम्हें अपनी सास की बात पहले से मान लेनी चाहिए थी, अगर पहले मान लेती तो इतना सब कुछ न सहन करना पड़ता। चलो छोड़ो इन बातों को, खाना लाओ जल्दी से, बहुत भूख लगी है।
2: इस तरह कोमल को ससुराल में कई महीने गुजर जाते हैं, पर कोमल की स्थिति दिन प्रतिदिन पहले से भी खराब हो जाती है। हर रोज के लड़ाई झगड़े सहते सहते कोमल तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि कोमल को लगा मैं खुद की जिंदगी खत्म कर दूं, और इसी सोच के साथ वो एक कदम उठाती है।
0: हर रोज की मार पिटाई से तो तंग आ गई हूँ मैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि खुद को ही खत्म कर दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसी अपनी जान नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ मर जाएगा, और इन सब बातों में इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी।
6: कोमल, तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? और दामाजी कहाँ है, और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई?
0: पिताजी, ऐसे हैवान के साथ शादी करने से तो अच्छा आप खुद मुझे जान से मार देते, तो आज मुझे ये नरक वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ती।
2: देखो भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है।
7: हाँ राजू, यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने अपने नशे की वजह से बेटी को बोझ समझकर उसे नरक में फेंक दिया है।
6: मुझे आप सभी माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है, जिसकी सजा मेरी फूल सी बेटी को भुगतनी पड़ी। कोमल, तुमने भी समझदारी से काम लिया है जो यहाँ वापिस आ गई और कुछ गलत कदम नहीं उठाया और बड़ा हादसा होने से बच गया।
2: इस तरह राजू इंस्पेक्टर के साथ कोमल के ससुराल जाता है।
8: इंस्पेक्टर साहब, आप सब इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, इन सभी ने मेरी बेटी की ये हालत की है और उसकी जिंदगी बर्बाद की है।
1: मैं मानता हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, हमारे होने वाले बच्चे के लिए माफ कर दो, एक मौका दे दो मुझे, आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा।
0: आप ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है।
2: तो श्रोताओं, सुना आपने एक लड़की की समझदारी, और सूझबूझ ने उसको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। सचमुच कोमल उन सभी औरतों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने घर में घुट घुट कर जी रही हैं, और ना जाने कितनी औरतें ऐसे हालातों को सहन नहीं कर पाती और मौत को गले लगा लेती हैं। श्रोताओं, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि अगर आप ऐसे हालातों से लड़ रहे हैं तो डरे ना और ना हार माने, साहस और बहादुरी से काम लें और खुद की जिंदगी को एक नए सिरे से जीना शुरू करें, और जुर्म और हालातों के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने हक के लिए लड़ें और साहसी बनें।
9: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभव को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है
10: 8860088827। जी हाँ,

0: 9806008082727।
1: और हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

हाँ, अखन अपना सब सुनै छलहुँ ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। एहिके सङ्ग आजु गाम घर अन्तर्गत झरोखा कार्यक्रम सम्पन्न होबय पर अछि। मिहिर कुमार झाके आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कामघर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण किसान वाणी कुछ एक पल में।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं संजय किशोर
4: और मैं सोमा चक्रवर्ती।
3: आइए एक नजर डालते हैं आज के इस अंक में प्रसारित होने वाले प्रमुख विषयों पर।
4: सबसे पहले कृषि चर्चा करेंगे जिसका विषय है वृक्ष लगाएं पुण्य कमाएं, जिसमें जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण किस प्रकार हमारी जीवन, खेती और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान है।
3: इसके बाद बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की।
4: आज की संक में लोक संस्कृति की सुगंध बिखेरती लोकगीत की मनमोहक प्रस्तुति भी होगी। कार्यक्रम में होगी एक विशेष वार्ता जिसमें कृषि एवं किसान हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।
3: सामयिक कृषि चर्चा के माध्यम से खेती किसानी से जुड़े नवीनतम विषयों, तकनीकों एवं उपयोगी जानकारियों पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी।
4: तो संजय जी, चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। वृक्ष लगाएं पुण्य कमाएं। वृक्ष जो है हमारे प्रकृति का एक अनमोल उपहार है और ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन, छाया, फल फूल, औषधियां और स्वच्छ वातावरण भी प्रदान करते हैं। और अगर हम देखते हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और घटते भूजल स्तर जैसी जो समस्याएं हैं, उसका प्रभावी जो समाधान अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है बल्कि एक महान पुण्य कार्य भी है।
3: सही कहा आपने, आज बढ़ते हुए प्रदूषण से सभी प्रभावित हैं। जलवायु परिवर्तन और वनों की जो कटाई हो रही है उसके कारण जो है पर्यावरण बहुत ही असंतुलित हो रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व भी बन जाता है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं अपने माध्यम से और उनकी देखभाल भी करें।
4: बिल्कुल,
3: ऐसा नहीं कि फिर वृक्ष लगाएं और फिर उनको जानवर चर गए।
4: बिल्कुल, और कहते हैं कि एक वृक्ष जो है अनेक जीव जंतुओं का आश्रय भी बनता है, वर्षा को बढ़ावा देता है, मिट्टी का कटाव रोकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित करता है।
3: बहुत सही कहा आपने, इसलिए वर्षा ऋतु का जो समय है वो वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है और ये बरसात का मौसम चल रहा है। यदि हम अपने जीवन में कम से कम एक पौधे लगाकर उसे बड़ा बना लें, उनको संरक्षित करके, तब वो धरती को हरा भरा और स्वस्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
4: सही कहा संजय जी, और वृक्ष लगाना केवल प्रकृति की सेवा नहीं है बल्कि

0: मानवता की भी सेवा है। अगर हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि हम सभी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, जिस प्रकार माँ अपने स्नेह, त्याग और ममता से हमारे जीवन को संवारती हैं, उसी प्रकार वृक्ष हमें शुद्ध वायु, फल, फूल, छाया, औषधियाँ और जीवन दायिनी प्रकृति का उपहार देते हैं। इसी भावना को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक वृक्ष माँ के नाम अभियान की भी शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य केवल वृक्ष रोपण करना ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अपने माँ के प्रति प्रेम और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी कराना है।
1: सही कहा आपने। और यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी माँ के ही नाम पर कम से कम एक वृक्ष लगा ले और उसकी नियमित देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण मिल सकता है। जिस प्रकार माँ अपने स्नेह, त्याग और ममता से हमारे जीवन को संवारती है, तो हम भी पेड़ के लिए एक माँ के रूप में तैयार करें अपने आप को।
0: सही कहा। इसलिए तो हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी वृक्ष लगाएंगे, पुण्य कमाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य बनाएंगे।
1: बहुत सही। तो अब आइए इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की।
0: बिल्कुल। हम सभी जानते हैं संजय जी कि हमारा जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसे समय पर पूरा करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। ये जो योजना है किसानों को कम ब्याज दर पर सरल और त्वरित कृषि ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे कि वो खेती के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई तथा अन्य जो कृषि उपकरण है उसकी खरीद आसानी से कर सकें।
1: बहुत सही। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है किसानों के लिए कि किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस प्रकार से वो करें।
0: बिल्कुल।
1: इसके माध्यम से किसानों को बार बार ऋण लेने की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है और आवश्यकता के अनुसार किसान जितनी जरूरत हो एक सीमा तक राशि निकाल सकते हैं और फसल बेचने के बाद उसे वापस जमा भी कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज दर में छूट का बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है।
0: और संजय जी, आज जो है किसान क्रेडिट कार्ड केवल फसल ऋण तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य कृषि संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उसके लिए भी काफी उपयोगी है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिल रही है।
1: बहुत सही कहा आपने। और इस तरह हम कह सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है, एक कवच के रूप में है। जब किसान को जरूरत पड़ती है तो पैसे देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो जब चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकता है। तो अभी तक लगभग देश भर के 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से लगभग 10 लाख करोड़ का ऋण किसानों तक पहुंच चुका है। यदि प्रत्येक पात्र किसान इस योजना का लाभ उठाए तो कृषि क्षेत्र और कृषि आवश्यकताएं हैं वो बहुत मजबूत होंगी और किसानों के जीवन का स्तर भी बहुत बेहतर हो पाएगा।
0: बिल्कुल। और किसान क्रेडिट कार्ड सभी प्रमुख सरकारी, निजी, क्षेत्रीय और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। किसान अपने निकटतम बैंक शाखा में आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि समृद्ध किसान, सशक्त भारत की पहचान, किसान क्रेडिट कार्ड बने हर किसान की शान।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये स्लोगन तो किसानों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। अब आगे चलते हैं।
0: बिल्कुल संजय जी, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को एक मनमोहक लोकगीत की प्रस्तुति हम सुनवा दें। और अभी बारिश का मौसम है और ऐसे में कजरी गीत का अपना ही एक अलग अंदाज है, तो क्यों ना एक कजरी गीत हम लोग सुन ले।
1: आपने मन की बात कर दी है, मेरा भी मन कर रहा था कि बरसाती मौसम है तो कुछ ना कुछ गीत जरूर हो और कजरी हो तो क्या बात है।

0: चाहिए। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं वर्षा जल का संरक्षण विषय पर।
1: बिल्कुल, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जो जल हम आसपास देखते हैं या जो जल आसपास है उसका संरक्षण हम कैसे करें ताकि आने वाले समय में उसका हम उपयोग कर सके।
0: तो एक स्लोगन मैं भी बोल दूं।
1: बिल्कुल।
0: जल है तो कल है, जल बचेगा तभी जीवन बचेगा।
1: बिल्कुल सही,
0: क्या कहना है?
1: एकदम बहुत खूब। और कहते हैं कि वर्षा जल जो है वो प्रकृति का अमूल्य उपहार है। भारत में वर्षा के रूप में बड़ी मात्रा में हमें जल प्राप्त होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है ना बिना उपयोग के ही नदियों में बहकर समुद्र तक पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल सही, यदि इस वर्षा जल का उपयोग जो है हम सही तरीके से कर पाएं, उसका संरक्षण कर पाएं, तो हम इसका पूरा सदुपयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इस जल का जो बर्बाद हो रहा है उसका संरक्षण हम करें।
1: सही बात है। वर्षा जल संरक्षण, इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा के पानी को

0: एकत्रित करके उसका सुरक्षित भंडारण करना और उसे भूजल स्तर बढ़ाने के लिए भूमि में पुनः पहुंचाना। इसके लिए घरों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाई जा सकती है, तालाबों में, कुओं में और जलाशयों का निर्माण एवं संरक्षण किया जा सकता है तथा खेतों में मेड़बंदी और छोटे छोटे जल संचयन ढांचे बनाए जा सकते हैं।
1: वर्षा जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है और ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है।
0: बिल्कुल सही कहा संजय जी, और इससे क्या होगा कि जो भूजल स्तर में है उसमें वृद्धि होगी, पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलता रहेगा और सूखे की स्थिति से भी हम काफी हद तक बचाव कर सकते हैं।
1: तो जल संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ये बात तो समझ में आ गई। मेरा ख्याल है कि बाकी जो हमारे श्रोता किसान हैं उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि जल बचाएंगे तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अपने घर में हो, अपने आसपास के किसी क्षेत्र में हो, विद्यालय में हो, कार्यालय में हो, खेत में हो, वर्षा का जल संरक्षित कर सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्षा जल का संरक्षण प्रकृति के प्रति हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले कल की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: और संजय जी, इसी के तहत एक कैच द रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला एक राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और संरक्षण करना ताकि भूजल स्तर बढ़े और भविष्य में जल संकट को कम किया जा सके। इस अभियान का मुख्य संदेश है जहां बारिश हो वहीं और जब बारिश हो तभी वर्षा जल को संचित करें। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स।
1: बहुत ही अच्छा अभियान है और इसके माध्यम से न ही किसान बल्कि सामान्य जन भी जागरूक होकर इस संरक्षण के प्रति अपना दायित्व निभा सकता है।
0: संजय जी, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज के इस अंक में एक विशेष वार्ता जिसमें कृषि एवं किसान हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विशेषज्ञ से उनका विचार हम लेंगे, तो इसी कड़ी में आज हम अपने किसान भाइयों के लिए एक वार्ता सुनवाने जा रहे हैं जिसका विषय है पशुओं में होने वाली बरसाती बीमारियां। और हमारे जो वार्ताकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो हैं डॉक्टर संजय कुमार भारती।
2: बरसात का मौसम पशु बीमारियों के लिए सबसे घातक होता है। पशु कीट प्रभावित घास खाने के बाद कई तरह की बीमारियां, दस्त, गलघोटू आदि से प्रभावित हो जाते हैं जिससे जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। वर्षा ऋतु में तापमान में बहुत बदलाव होते रहता है जिसका कुप्रभाव प्रत्येक श्रेणी के पशुओं में देखने को मिलता है। इस मौसम में वातावरण में अधिक आर्द्रता होने की वजह से पशुओं की पाचन प्रक्रिया तथा उसकी रोग रोधक शक्ति पर भी कुप्रभाव पड़ता है। वर्षा ऋतु में समय बीमारियों फैलने वाले जीव जंतु एवं कीटाणु की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जिससे पशुओं में अनेक बीमारियों के फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। इस कारण से पशुपालकों को काफी नुकसान होता है। हम चर्चा कर रहे हैं बरसात के मौसम में होने वाले मुख्य रोग। परजीवी से होने वाले रोग साधारणतः दो तरह के परजीवी होते हैं, एक अंत परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। अंत परजीवी जिसे पेट में कीड़ा अकृमि कहते हैं, इससे उत्पन्न होने वाले रोग से ग्रसित पशुओं में दस्त, कब्ज, पानी की कमी, चक्कर आना जैसे दिखता है और पशु की पाचन प्रक्रिया में शिकायत रहती है और गोबर पतला होने लगता है। इसके उपचार हेतु उसके गोबर की जांच करानी चाहिए तथा पशु चिकित्सक से सलाह लेकर परजीवी निशक दवा को 2 सप्ताह के अंतराल में 2-2 बार पिलानी चाहिए। बाह्य परजीवी जिसे चिचड़ी रोग कहते हैं, चिचड़ी अनेक तरह की बीमारियों के कीटाणु फैलाते हैं। यह पशु में थलेरिया, बेबीसियोसिस एवं सर्रा जैसे रोग के कारण होते हैं। इसमें पशुओं में कमजोरी, एनीमिया एवं दूध की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। उपचार हेतु चिचड़ी को मारने के लिए 0.05% मेलाथियोन घोल का छिड़काव पशु के शरीर तथा पशुशाला में करनी चाहिए। छिड़काव के बाद पशु को एक स्थान पर बांध देना चाहिए और उसे अपने शरीर को चाटने नहीं देना चाहिए। छिड़काव करने से पहले पशु को पानी अवश्य पिलानी चाहिए। परजीवी रोगों से बचने के लिए समय मौसम में पशु की नदी तालाब किनारे नहीं ले जाना चाहिए और न ही उसे खुले मैदान की घासों को चरने देना चाहिए। जीवाणु जनित रोग, गलघोटू रोग, इस बीमारी से पशु में तेज ज्वर से ग्रसित हो जाता है और उसके गले में सूजन हो जाती है और एक आवाज उत्पन्न होती है, उसे सांस लेने में असुविधा होती है, परेशानी होती है और पशुओं को काफी तकलीफ होता है जिससे उसकी मृत्यु एवं दम घुटने से हो जाती है। उपचार एवं बचाव, इस बीमारी से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सही समय पे साधारणतः मई और जून में टीकाकरण करना चाहिए। अगर पशु ग्रसित हो जाए तो स्वस्थ पशुओं से अलग रखकर पशु चिकित्सकों द्वारा जितना जल्द हो सके मिलकर

0: उसका उपचार करवाना चाहिए। लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार को प्रायः 3 दिवसीय बुखार भी कहा जाता है। इस रोग से पशु लगातार 3 दिन तक रोज तेज ज्वर से पीड़ित हो जाता है। पशुओं की कमजोरी इतनी अधिक हो जाती है कि हमेशा बैठा रहता है। उपचार, इसका सबसे आसान उपचार मीठा सोडा तथा सोडियम सैलिसिलेट को बराबर भाग में पिला देना चाहिए। चेचक रोग, यह रोग मुक्त पशुओं के आवास से ज्यादा गंदगी होने के कारण होता है। इसमें पशु की ऐन एवं थन का रंग लाल हो जाता है। इस रोग में पशुओं को तेज बुखार भी हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु होने के बाद पशुओं में रोग निरोधक क्षमता की शक्ति कम हो जाती है। उपचार एवं बचाव हेतु पीड़ित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर लेना चाहिए। अगर पशु ग्रसित हो जाए तो सबसे पहले पोटासियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा कहते हैं, के घोल में संक्रमित जगह को धोएं और उसके बाद उसे जगह पे मलहम लगाने से पशुओं को बहुत आराम मिलता है। विषाणु जनित रोग, मुंह पका और खुर पका, जिसे हम इंग्लिश में FMD फूट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। मुंह पका एवं खुर पका रोग मुख्यतः खुर वाले पशुओं में होता है, जैसे कि अत्यंत संक्रामक और घातक विषाणु रोग की श्रेणी में आता है, या गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में एवं हिरण जैसे जंगली पशुओं में भी होता है। इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार आ जाता है। बीमार पशु के मुंह, मसूड़े, जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग तथा खुर के नीचे की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभार आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर एक बड़ा छाला बना लेता है, जो कि बाद में जख्म का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है और मुंह से लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ाकर चलता है। दुधारू पशुओं में दूध की उत्पादन एकदम गिर जाती है, वे एकदम कमजोर हो जाते हैं और गर्भवती पशुओं में गर्भपात होने की संभावनाएं बनी रहती है। उपचार एवं बचाव, रोग ग्रसित पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी से दूर रखना चाहिए और मलहम का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी और 100 ml यानी 100 ml मिलीलीटर पानी से घोल बनाकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर एवं अन्य पशुओं से दूर रखना चाहिए जो कि स्वस्थ पशु है। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाले वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन पर गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को टीकाकरण करवाना चाहिए। तदुपरांत 8 माह के अंतराल पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। रिंडरपेस्ट, आमतौर पर यह बीमारी जुगाली करने वाले जानवर जैसे साधारण तो जो पालतू पशु होते हैं और सुअर में भी होती है। यह काफी संक्रामक और वायरल बीमारी होती है। इस बीमारी से क्रॉस ब्रीड जो पशु मवेशी होती है उसमें अधिक प्रभावित होता है। कैसे फैलता है यह बीमारी? रिंडरपेस्ट सांस लेने से फैलती है और इसके अलावा दूषित चारा और पानी पीने से होता है। रिंडरपेस्ट के लक्षण, रिंडरपेस्ट बीमारियों से संक्रमित होने पर पशु दूध देना कम कर देते हैं, साथ ही साथ इनमें भूख की कमी आ जाती है। इसमें 3 दिनों तक बुखार रहता है और पशुओं के नाक बहती है और पेट में दर्द होता है। रिंडरपेस्ट के बचाव, इस बीमारी से बचने के लिए अब सबसे पहले स्वस्थ जानवरों को संक्रमित जानवर से अलग कर लेना चाहिए, उसके बाद पशु चिकित्सक मिलकर इसकी इलाज करवानी चाहिए। चर्म रोग, वर्षा ऋतु में गाय भैंस में चमड़ी का रोग मुख्यतः एलर्जी, फुफंदी एवं चिचड़ी के कारण होता है, जिसके कारण पशुओं के त्वचा पर बहुत तेज खुजलाहट होती है, जिसके फलस्वरूप त्वचा काफी मोटी हो जाती है और मुरझा जाती है। खाज खुजली से पशुओं के सारे बाल झड़ जाते हैं। समानतः यह देखा गया है कि पशुओं की त्वचा में काफी गंदी बदबू भी आती है। उपचार, इसका उपचार पशु चिकित्सक द्वारा उसके परीक्षण कराकर तुरंत शुरुआत करनी चाहिए। बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव हेतु पशुपालकों को कुछ उपाय बरतनी चाहिए, जैसे हमेशा पशु और पशुशाला को साफ रखें। सफाई की इस अवधि में एक समस्याएं हो सकती है, लेकिन गंदगी और नमी के कारण पशु को शीत तनाव की अधिक संभावनाएं होती है। पशुशाला को दिन में 2 या 3 बार फिनाइल से अवश्य साफ करनी चाहिए।
1: ये बहुत ही उपयोगी वार्ता थी और इस वार्ता के साथ ही जब हम लोग बरसात में बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है वर्षा का। तो अब जो है धान का समय है, तो धान की रोपनी भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें कि किसान को समुचित जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी होता है।
2: सही बात है, इसके लिए खेत की तैयारी किस तरह से की जा सके, कौन सा खाद उसमें प्रयोग किया जा सके, रोपनी, सिंचाई, तो इसी विषय पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर ले।
1: बिल्कुल
2: किसान भाई, जब आप धान के बिचड़ा तैयार करते हैं।

0: हैं तो बीज को बीज स्थली में आप गिरा रहे हो, जब तक बिछड़े तैयार ना हो जाए उसके पूर्व आपको सबसे पहले मुख्य रूप से खेत को तैयार करना होगा और तैयार करने के बाद ही इन बिछड़ों की रोपनी आप कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए सर्वप्रथम रोपनी के 7-8 दिन पहले खेत की जो मिट्टी है उसको उल्टा पलटा कर ले, खेत को 3 से 4 दिनों तक यूं ही छोड़ देना चाहिए। इससे जो घास पात एवं खेत में पड़े अन्य जैविक पदार्थ हैं वो मिट्टी में दबकर सड़ जाते हैं और इसके बाद कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद डालकर जुताई यंत्र से 2-3 जुताई करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए।
1: जब खाद डाल देते हैं आप खेतों में, उसके बाद रोपनी के समय कतार से कतार की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सामान्य विधि से रोपनी के लिए 20 से 22 दिनों का बिचड़ा और श्री विधि से रोपनी के लिए 10 से 12 दिन।
0: और सिंचाई के लिए धान की फसल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, खेत में पानी का जमाव लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखें। खेत में पानी का सही स्तर रखने पर फास्फेट, लौह और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और खरपतवार भी नियंत्रित रहता है। रोपनी से 1 सप्ताह बाद तक पानी रखना चाहिए और बीच बीच में यथा संभव खेत को पानी से खाली भी रखें ताकि कल्ले काफी संख्या में निकल सके। तो ये धान की रोपनी संबंधित हम लोग बातचीत कर रहे थे अपने किसान भाइयों के लिए।
1: तो अब हम आपको बता देते हैं मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी। कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से घने बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज चमक की संभावनाएं हो सकती हैं।
0: किसान भाई, यदि वर्षा अच्छी हो रही है तो खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। वर्षा के दौरान रासायनिक दवाओं का छिड़काव बिल्कुल ना करें, मौसम साफ होने पर ही करें। पशुओं को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं।
1: तो ये थी मौसम की जानकारी और श्रोता कि आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव या कोई और बात हमसे अगर साझा करेंगे तो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो आपके फीडबैक के लिए हमारा ईमेल आईडी है airpatna@gmail.com।
2: खेतों की आवाज, देश की पहचान। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल और किसान वाणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
5: इसके लिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
4: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
5: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें।
6: संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
7: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: सुनिए, आपके पास कोई शानदार रेडियो आइडिया है क्या?
9: आइडिया है, कहानी है, ऑडियो कंटेंट है, लेकिन उसे सुनाएगा कौन?
8: आकाशवाणी।
9: जी हाँ, प्रसार भारती के आकाशवाणी नेटवर्क पर कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित हैं।
8: क्या आप प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, कंटेंट क्रिएटर, राइट्स ओनर या एग्रीगेटर हैं?
9: तो अपने मौलिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भेजिए और अपने कंटेंट को दीजिए आकाशवाणी का विशाल मंच।
8: रेडियो ड्रामा, फीचर, डॉक्यूमेंट्री, स्टोरी टेलिंग, ऑडियो सीरीज, पॉडकास्ट, क्विज
9: और शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम तथा लोक संगीत आधारित कार्यक्रम भी।
8: हिंदी, अंग्रेजी और निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं में नेशनल, रीजनल और लोकल आकाशवाणी स्टेशनों के लिए।
9: आपके कार्यक्रम में हो सकता है विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से जुड़ने का अवसर।
8: चुनिए अपनी भागीदारी का तरीका, रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड या ग्रेटिस मोड।
9: रेवेन्यू शेयरिंग मोड में विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से आय का साझा अवसर, और स्पॉन्सर्ड मोड में अपने ब्रांड, उत्पाद या सेवा के प्रचार के लिए फ्री कमर्शियल टाइम का अवसर।
8: बस ध्यान रहे, कंटेंट मौलिक हो, अधिकार आपके पास हो और आकाशवाणी के कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड का पालन हो।
9: आपके कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव ट्रीटमेंट, टीम, ऑडियो क्वालिटी और व्यावसायिक संभावनाओं का होगा मूल्यांकन।
8: तो फिर इंतजार किस बात का?
9: अपना कार्यक्रम प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में आकाशवाणी पटना के क्लस्टर या नोडल कार्यालय को ईमेल करें।
8: हमारा ईमेल पता है
9: ddgeaarpatna@redifmail.com या pecaarpatna@gmail.com या
8: hooaarpatna@prasarbharati.gov.in।
9: अधिक जानकारी के लिए सीधे आ जाइए आकाशवाणी पटना।
8: आपका आइडिया, आपकी आवाज, आकाशवाणी का मंच।
9: आकाशवाणी के साथ कंटेंट को नई पहुंच
8: और विज्ञापन को नई संभावनाएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। रेलवे ने दानापुर से फतुहा के बीच 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दी। भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल कोटे से जल्द हो सकता है मनोनयन। और प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत देशभर में 10,000 स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार इस कार्यक्रम में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इस खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेगी। इससे प्रतिवर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपए की कमी की है। घटी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पटना में व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 3,227 रुपए से कम होकर 3,018 रुपए हो गई है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे सहयोग शिविर के तहत अब तक 5,83,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,33,000 से अधिक मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
1: राज्य में के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु सहयोग शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 19 मई को यह कार्यक्रम लागू किया गया था प्रथम बार और अब तक में 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं सहयोग शिविर में, जिसमें से 5,33,904 समस्या का निस्तार कर दिया गया है और शेष अभी लंबित है।
0: भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के पद से इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता साफ हो गया है। देवेश कुमार ने कल अपना इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया। राज्यपाल कोटे से मनोनीत देवेश कुमार का कार्यकाल मार्च 2027 तक था। हमारे संवाददाता ने बताया कि दीपक प्रकाश का राज्यपाल कोटे से जल्द मनोनयन होने की संभावना है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री के रूप में 6 महीने के

0: कार्यकाल पूरा होने पर बिहार सरकार से जवाब मांगा था। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है। प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। गली मोहल्लों में कचरे का अंबार दिखने लगा है, इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। राजधानी पटना में साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस बीच पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा ने हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है।
1: बेसिकली जो अभी का जो स्ट्राइक है उसमें जो तीन मांगे हैं, इसके आलोक में विभाग के जो सचिव सर हैं उनके साथ जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे बिहार भर के, उनके साथ भी विभाग स्तर पे भी बैठक की गई है। विभाग के स्तर पे भी जो उच्च पदाधिकारी हैं वो लोग भी उसमें मौजूद रहे। उसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा भी सभी जो यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बिहार को, उन लोगों के साथ भी उनकी समस्याओं को सुना गया। क्योंकि ये नीतिगत निर्णय है, किसी भी यूएलबी के स्तर से ये नहीं होना है, ये बेसिकली एक नीतिगत निर्णय लेने की इसमें बात आती।
0: मुंगेर से हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कर्मियों ने मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प दोहराया है।
2: मैं 300 मांग है सरकारी का, चलो 7वां वेतन एनजीओ का दैनिक सरकारी कर दे, एनजीओ को स्थायी करे, दैनिक को स्थायी करे, प्रशासन उनको बुला के अनुकंपा को बहाल करे,
3: दैनिक एनजीओ का स्थायीकरण किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए, 7वां वेतनमान और अनुकंपा को बहाल किया जाए। यह मांग लेकर पूरे बिहार में ये तीसरा दिन हड़ताल है। सभी हड़ताल यहाँ कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी और सफाई कर्मी, एनजीओ कर्मी, सभी कर्मी हड़ताल पर थे। आज टंडन नहराई के आकर सभी आपको धमकी दिया कि अगर जो तुम नहीं काम करोगे तो आपको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और बलपूर्वक उनको कार्यालय खुलवाया गया।
0: गौरतलब है कि सफाई कर्मी अपनी नौकरी स्थायी करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में उनके चेरिया बड़ियारपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर स्थित निजी आवास पर छापेमारी के दौरान 50 कारतूस बरामद हुए थे। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के पंडौल पंचायत के मुखिया नंद किशोर राम को 12,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुखिया शिकायतकर्ता से मनरेगा के तहत कराए गए कार्य के भुगतान के एवज में घूस ले रहा था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने सीतामढ़ी में आयोजित जन सुनवाई के दौरान फोन पर रिश्वत मांगने के आरोपित डेटा एंट्री ऑपरेटर को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। मंत्री ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गया निवासी और भारतीय सेना के हवलदार सुमन राणा ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुष शॉटपुट F57 स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही वे इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश के खेल इतिहास का गौरवशाली क्षण है। राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य

0: के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इस अवधि में किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे अधिक 74.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के अररिया, किशनगंज, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: कटिहार में मखाना के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अब मखाना से बिस्कुट, ठेकुआ, पेड़ा, बर्फी और जलेबी समेत विभिन्न मिठाइयां तैयार की जाएंगी। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इसके लिए कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत किसानों और मिठाई व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2: वैल्यू एडिशन भी मखाना के प्रोडक्ट्स का किया जाए, जिससे कि जो मखाना के उद्योग से जुड़े हुए किसान हैं या उस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको बेहतर रेम्यूनरेशन मिल सके। इसी क्रम में मखाना से मिठाई, जलेबी, बिस्किट, ठेकुआ, ये सारी चीजें बनाने का काम शुरू किया गया। जो हमारे मखाना से लिंक्ड FPOs हैं वो भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए, और उनको प्रमोट करने के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं।
0: मधुबनी जिले में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विद्यालय का संचालन फिलहाल वाटसन प्लस टू स्कूल के अस्थायी भवन से किया जाएगा। इधर शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी भवन के लिए 5 एकड़ से अधिक भूमि की लीज प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मॉडल स्कूल निमी के पास उपलब्ध कराई गई इस भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण होगा। आज से विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हो गया है। प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक यह सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रदेश भर में स्वास्थ्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श शिविर और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कल से गया मधुपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गया से मानपुर, तिलैया, नवादा, वारिसलीगंज, शेखपुरा, किउल, जमुई, झाझा और जसीडी होते हुए मधुपुर पहुंचेगी। मुंगेर न्यायालय परिसर के नए भवन के प्रथम तल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। कटिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो और वीडियो डालने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले ने जुलाई महीने में राज्य में मेडी टेली कंसल्टेशन सेवाओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट केंद्र में आज 24वीं राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन बिहार का 33वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जहानाबाद जिला आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रोहतास जिले के उचैला स्थित सरस्वती विद्यानिकेतन और सारण के अवधपुर आंगनवाड़ी केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को महिला सुरक्षा और महिला स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गयी। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी नशा मुक्ति संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों में भी होगा आयोजन। रेलवे ने दानापुर से फतुहा के बीच 976 करोड़ रुपए की लागत वाली मल्टी ट्रैक परियोजना को मंजूरी दी।

0: भाजपा के विधान पार्षद देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के विधान पार्षद बनने का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल कोटे से जल्द हो सकता है मनोनयन। और प्रदेश के नगर निकाय के सफाई कर्मियों और वाहन चालकों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रमाणित जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप ये जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
1: नवादा जिले में औसत से कम वर्षा होने के कारण धान रोपनी का कार्य प्रभावित हो रहा है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में पानी की कमी बनी हुई है, जिसके कारण जिले में धान रोपने की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। जिले में अब तक 38% धान की रोपनी हो पाई है। जिले की अधिकांश छोटी बड़ी नदियां सूखी हुई है, ऐसे में किसान निजी बोरिंग, डीजल और बिजली चालित पंप सेट तथा अन्य वैकल्पिक जल स्रोतों के सहारे खेतों में पानी पहुँचाकर धान की रोपनी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में भागलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में पठन पाठन कार्य का शुभारंभ किया। इनमें नवादा जिले के 6 राजकीय डिग्री कॉलेज रोह, सिरदला, मिसकौर, गोविंदपुर, काशी चौक और अकबरपुर शामिल है। नवादा के मिसकौर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने शैक्षणिक गतिविधियों का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान विषयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू की गई है। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। वहीं आगामी चरण में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में भी स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान बिहार के 551 नव स्थापित सरस्वती विद्यानिकेतन आदर्श विद्यालयों का उद्घाटन किया। इनमें नवादा जिले के 14 आदर्श विद्यालय भी शामिल हैं। इस अवसर पर इंटर मॉडल स्कूल आदर्श विद्यालय नारदीगंज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी ने किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों के विकास पर विशेष जोर दिया। वहीं नवादा वासियों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी मिली है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से 5 तक नामांकन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जिले में प्रधानमंत्री सूरजघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन पहल कर रहा है। योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रति माह 3

0: 100 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी ने बैंकों और अधिकृत वेंडरों के साथ बैठक कर लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों के आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए, साथ ही बैंकों, विद्युत विभाग और अधिकृत वेंडरों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। जिले के गोविंदपुर प्रखंड की पहाड़ियों में अवस्थित ककोलत जलप्रपात की प्रवेश शुल्क दरों में एक बार फिर संशोधन किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ कुमार कृष्णा ने बताया कि अब ककोलत आने वाले सैलानियों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रवेश शुल्क 20 रूपए तथा शनिवार और रविवार को 50 रूपए निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले मई माह में प्रवेश शुल्क बढ़ाकर 100 रूपए कर दिया गया था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नवादा जिले में पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 72,450 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रतिदिन 2,415 आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर सभी पात्र परिवारों का राशन कार्ड बनाया जा सके।
1: अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। फिल्म संगीत आए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म आया सावन झूमके में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म संगीत समाप्त होते ही हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। कुछ एक पल में आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में।

कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष
तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से

वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जाँच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए सुनते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं विभा सिन्हा के स्वर में ये कजरी।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। अगला गाना सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आप तक पहुंचा दें। श्रोताओं, स्तनपान नवजात शिशु के लिए जरूरी तो

है ही, स्तनपान कराना माता के लिए भी फायदेमंद है। स्तनपान के फायदे यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जमुरद परवीन। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222241। दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 2 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। और अब लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनिए शारदा सिन्हा को।

0: आकाशवाणी का ये दर्पण का केंद्र है, सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान, बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का उड़ान कार्यक्रम में। मैं हूं राजेश और एक सप्ताह और गुजर गया और हम आ गए ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर। पहले तो आप सबों का बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, खास करके बीबीए और बीसीए की पढ़ाई को लेकर। भरोसा जो हमने इतने वर्षों में कायम किया है उड़ान कार्यक्रम के साथ, सचमुच सचमुच बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ तो काम आ रहे हैं अपने युवाओं के लिए। हमने बार बार कहा है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ जाइए, और ऐसे में आज की तारीख में बीसीए और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है। बीसीए और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है। पिछले 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए कोर्स को लेकर जो संस्थान खड़ा है आर्किड

0: बिजनेस कॉलेज, जी हां आर्केड बिजनेस कॉलेज, उसी की तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं कि आपके अंदर आप सबों तक जानकारियां पहुंचाई जाएं। कल को कोई भी लड़का ये ना कहे कि मुझे तो जानकारी थी ही नहीं, बीसीए और बीबीए एकदम माला जपता है आपका राजेश इन कोर्सेज को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे बच्चे बीसीए और बीबीए करके सफल हो जाते हैं और आर्केड बिजनेस कॉलेज किस तरीके से नर्चर करता है। हमने पिछले कुछ एपिसोड में स्टूडेंट्स की बातें आपको सुनवाई थी, एकदम सही सही जो उन्होंने कहा मैंने आपके सामने भेज दिया और उसके बाद आप लोगों को हाँ ऐसा लगा कि सचमुच बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत उम्दा है, हाँ आपने जानकारियां जाननी चाहिए। तो आर्केड बिजनेस कॉलेज को हम थैंक यू कहना चाहेंगे, आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर पटना और सगुना मोड़ पटना में है। अगर जो आपको कोई जानकारियां चाहिए तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 7520800 ये नंबर है, इस पर पूरी और सही और सटीक जानकारियां दी जाती हैं और दी गई हैं और तभी तो इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज के बारे में एक बात और बता दें, हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त है, जी हाँ स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। अब आप कहिएगा कि स्थायी मान्यता क्या होता है और वो भी बीसी और बीबीए के लिए, तो सुनिए
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना, कॉल करें 7520800800, याद रखे 7520800800।
0: समझ में आ गया, कोर्स को करते करते अगर बीच में ही मान्यता खत्म हो जाए या कहीं हेल्ड अप कर दिया जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए वैसे संस्थान को चुनना चाहिए जहां से आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर हो। ढेर सारी बातें होंगी लेकिन उससे पहले एक बार फिर नंबर बता दें, आर्केड बिजनेस कॉलेज का बीसी और बीबीए के लिए 27 वर्षों से लगे हैं, 7520800 और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं आशीष जी, आशीष आदर्श जो डायरेक्टर भी हैं और करियर काउंसलर भी हैं। ढेर सारे सवाल आए थे हाँ, तो हमने सोचा एक बार फिर से, हालांकि इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था उसके बावजूद भी आए थे सवाल, तो हमने सोचा इन्हीं से आंसर ले लें। और वो सवाल ये है कि अगर बीसीए और बीबीए में से और साथ में अगर इंजीनियरिंग रहे तो किसे चुनना चाहिए। हाँ आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका, और बताइए। अब
4: देखिए ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं या किसी ने बिजनेस कर लिया, और बाकी 7 लाख लोग निकल गया, बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी आपका जो टैलेंट है वो एवरेज है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ज़रूर करिए और आप देखिए उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप एमसीए कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज, एमसीए करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो आईटी कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MCA, वो MCA आप कीजिए BCA करने के बाद में, या BCA करने के बाद भी इवन बहुत सारी IT कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि BCA एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल

0: करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मैं मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़, आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
1: वाह आशीष जी, आपने बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझाकर आंकड़ा देकर आपने जवाब दे दिया। कितने अपडेट रहते हैं आप। बहरहाल कार्यक्रम चल रहा है उड़ान। आशीष आदर्श जी हमारे साथ बैठे हैं, डायरेक्टर हैं आर्केट बिजनेस कॉलेज के, और ये कार्यक्रम भी हम लेकर आ रहे हैं आर्केट बिजनेस कॉलेज की तरफ से। बीसीए और बीबीए के कोर्स पर चर्चा चल रही है, सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है। अगर इसके विषय में आपको जानकारी दिल चाहिए तो 27 वर्षों से लगा है आर्केट बिजनेस कॉलेज इसी बीसीए और बीबीए के कोर्स को लेकर। इससे बेहतर जानकारी शायद हाँ कोई नहीं दे सकता, और अस्थाई मान्यता प्राप्त भी है बीसीए और बीबीए कोर्स के लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। पटना में राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ दो सेंटर हैं इसके। नंबर नोट कीजिए 7520800, 7520800। जी हाँ, ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। आशीष जी एक बात बताइए, आर्केट बिजनेस ग्रुप का तो बहुत सारा कॉलेजेज है, बहुत सारे क्लासेस कराए जाते हैं, छोटा सा एक छोटी सी जानकारी आप दे दीजिए।
0: देखिए आर्केट ग्रुप के ऑल टुगेदर तीन कॉलेजेस हैं, एक आर्केट बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्केट बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़, और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ, ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहां पर हमने बीसीए बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहां चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं, और ये हमने 2025 से शुरू किया है। और आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि सारे जो जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सब हमारी फुल हो रही हैं, और काफ़ी अच्छे संख्या में छात्र आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि जब हमारे पास एमबीए एमसीए की व्यवस्था है यहाँ पे, अब वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ, हमारे यहाँ जो है छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड खुद आराम से हम सारा प्रोसेसिंग करा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है कि हम कैसे इसको करेंगे, तो हम तो सभी स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि भाई तुमको कोर्स करना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी है, तुम हमारे पास चले आओ, तुम्हारा सारा काम, सारा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, सारा कुछ हम तुमको समझाएंगे, समझा करके सारा प्रोसेसिंग तुम्हारा करा करके तुमको हम पेपर दे देंगे। तो सारी चीज़ें उसके बाद से फिर एक दो प्रक्रिया है जो प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, जा करके एक जगह फॉर्म जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जितनी भी सारा गाइडेंस हमारी तरफ से होगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी इन सुविधा के दौरान के साथ साथ में आप एक बहुत ही स्मूथ तरीके से अपना कोर्स हमारे यहाँ से पूरा कर सकते हैं।
1: और सब कुछ अगर स्मूथली हो जाए तो क्या कहने, करियर की बात है भैया, समझने की जरूरत है, हाँ भटकने की जरूरत नहीं है। आर्केट बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से स्टूडेंट का भरोसा है बीसी और बीबीए के लिए। अगर जो आप चाहते हैं जानकारियां लेना या यहां से पढ़ना, तो हम कहेंगे फिर भी जाइए, देखिए, समझिए, परखिए, तब जुड़िए। हम कभी नहीं कहते कि जाइए और इस कार्यक्रम को सुन के एडमिशन ले लीजिए, ना ना ना, कभी नहीं, करियर की बातें हैं। और नंबर हम बताते हैं, फोन नंबर, बात कीजिए, समझदारी डेवलप कीजिए और तब जाकर कहीं हाँ जुड़िए। 7520800800 ये नंबर है, 7520800800। और ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से बीसी और बीबीए के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। स्थायी मान्यता का क्या मतलब होता है?
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केट बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केट से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
4: आर्केट बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करे 7520800800, याद रखे 7520800800।
1: समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़ते। आशीष जी एक बात, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, चकाचौंध है, विज्ञापन है, सब कुछ है, कैसे डिसाइड करें, कैसे इस विज्ञापन के चक्कर में ना पड़े, क्या करना चाहिए वहां जाकर सिलेक्शन करते समय इंस्टीट्यूशन का, ये बता दीजिए आप।
0: देखिए एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो

0: भले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है? अगर आपको कोई वैसे स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीजें मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने BCA किया या BBA किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है। और हम ये बात ये आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही, बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
1: एंड ऑफ द डे यानी कोर्स के खत्म होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण तो यही है ना कि रोजगार मिले, नौकरी मिले। इसीलिए बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने नब्ज को पकड़ा है। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा व्यवहार मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, और जब पढ़ाई अच्छी होगी तो कंपनीज आएंगे तो नौकरी भी मिलेगी। जी हाँ, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे टीचर्स के बारे में, हम आपसे पूछेंगे कि टीचर्स की क्या स्थिति है, टीचर्स कैसे होने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, जो लोगों ने देर से रेडियो खोला है, कि उड़ान कार्यक्रम चल रहा है और आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। BCA और BBA के लिए अगर जानकारियां चाहिए तो डायल कीजिए 75208800। हाँ, टीचर्स, व्हाट अबाउट टीचर्स?
0: देखिए, टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है। आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहां जाकर रिव्यूज देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, टीचर्स किसी संस्थान की आत्मा होते हैं। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप उड़ान कार्यक्रम के इस अंक में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, खास करके चकाचौंध से बचकर कैसे सिलेक्शन करें आप संस्थान का, इंजीनियरिंग और BCA और BBA में कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये आपने बताया, बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट इसका जरूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम उड़ान चल रहा है, बस कुछ देर में आज का उड़ान खत्म होगा और अगले सप्ताह की तैयारी हम शुरू करेंगे। आप स्टूडेंट हमें फोन कर सकते हैं BCA और BBA की पढ़ाई की जानकारी लेने के लिए, नंबर है 75208800 75208800। आर्केड बिजनेस कॉलेज बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में, पिछले 27 वर्षों से BCA और BBA की पढ़ाई में लगा है, बहुत ही उम्दा संस्थान। आप चाहें तो 75208800 पर बात करके जानकारियां ले सकते हैं। आज का उड़ान कार्यक्रम खत्म करने का अपने राजेश को दीजिए इजाजत, भरोसा रखिए सही और सटीक बातें लेकर आऊंगा। चलूं, आज के दिन करियर की बातें होती है इसलिए चलूं आज। हाँ, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। सुनिए लोकगीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: विज्ञापन से पहले आप सुन रही थी विभा सिन्हा के स्वर में लोकगीत। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या प्रसारित किए जाएंगे।
3: अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?
5: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर।

0: कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
3: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं

0: के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें

0: गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2 लाख रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए।

0: समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माही, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोर्धा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरल में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कमल गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कम्पिटिशन में और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कम्पिटिशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल में मेरा अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth

0: 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Center approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से.
0: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है. पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं. 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई. 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं. आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है.
0: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है. मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.
0: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitarama Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की. 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे. आज ये संख्या 166 है. एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी. एनडीए सरकार में आज छोटे

0: मरकज ने सैलाब से मुतासरा रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। उड़ीसा में सैलाब का जोर जारी है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 6 अफराद की मौत हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सोमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त में नुमाया रोल के लिए भारतीय नौजवानों की सताइश की है और उन पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई की मुहिम, पानी की बचत और कुदरती वसाइल को महफूज रखने के शोबों में भी अपना रोल अदा करें और भारत में बनाई गई मसनूआत तोहफे में दें। जनाब मोदी आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि हमारे नौजवानों को राह दिखाना और मुल्क की तामीर के लिए काम करने की खातिर उन्हें बाइख्तियार बनाना स्वामी विवेकानंद का नजरिया था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: जनाब मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों की सलाहियत की बदौलत भारत दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट बन गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इख्तिराअत और प्राइवेट सेक्टर के खलाई मिशन में नई नई पेशरफ्त हुई हैं। इसके अलावा जनाब मोदी ने आईटीआईज, आईआईएम्स, आईआईटीज और एम्स समेत नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करके नीज मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा करके तालीम के शोबे में गुज़श्ता 12 साल के दौरान की गई तरक्की को उजागर किया।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एमबी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनअती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने के तहत पूरी तरह अहदबंद है। भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे समेत तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों से मरकज और रियासत में एनडीए सरकारों के तहत रियासत की तेज रफ्तार तरक्की की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने नए हवाई अड्डे को आंध्र प्रदेश, खासतौर पर शिमाली आंध्र की तरक्की के रनवे और रियासत के नौजवानों की उमंगों के लिए एक लॉन्च पैड से ताबीर किया। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने सैलाब से मुतासरा रियासतों की मदद के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम आने वाले रियासती फंड SDRF के लिए मरकज के हिस्से की 2,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सैलाब से मुतासरा 7 रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को इससे कबल माली साल 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त मौसूल हुई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मुतासरा रियासतों के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई है उसमें माली साल 2026-27 के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर

0: अरुणाचल प्रदेश के वास्ते 44 करोड़ 55 लाख रुपए शामिल हैं। आसाम के लिए पहली किस्त के तौर पर 79 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश को पहले ही इमदाद की पहली किस्त मिल चुकी है और अब दूसरी किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 193 करोड़ 95 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद से हुकूमत रियासती सरकारों के साथ करीबी तालमेल कायम रखते हुए सैलाब की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार ने जहां कहीं भी जरूरत पेश आई हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। इसमें कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स NDRF की टीमों को पहले से तैनात करना और दिफा की वजारत की तरफ से लॉजिस्टिक्स मदद फराहम करना शामिल है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत आज सुबह से फिर शुरू हो गई है। गुज़श्ता 6 साल से ज्यादा अरसे से यह मुअत्तल थी। इस तिजारत का दोबारा शुरू होना भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्तों में एक मुस्बत अलामत है। हमारे नामा निगार ने बताया कि भारत और चीन दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने आज सुबह उस मुकाम पर मुलाकात की जो दोनों में से किसी के भी कब्जे में नहीं है। चीन की नुमाइंदगी कॉमर्स और सरहदी तिजारत के महकमों के नुमाइंदों समेत तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते के इंतजामी सरबराह ने की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सरहद के दोनों तरफ तिजारत की बहाली भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्ते के सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। 1962 में भारत चीन महाज आराई के पेशे नजर बंद रहने के बाद 2006 में सरहदी तिजारत बाजाब्ता तौर पर बहाल की गई थी और 2020 में COVID-19 वबा के सबब मुअत्तिल किए जाने से पहले बिला रुकावट जारी रही। ये सरहदी तिजारत पीर से जुमेरात तक अंजाम दी जा सकेगी और भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे गेट खोले जाएंगे और हर इंदराज शुदा ताजिर को रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख रुपए की तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंजूर शुदा दर आमदाती और बर आमदाती अशिया की मौजूदा फहरिस्त और कामकाज के मेयारी जाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रसाद नड्डा ने पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए कौमी अहलियत दाखिला इम्तिहान की तैयारियों का आज जायजा लिया ताकि बिला रुकावट महफूज शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इम्तिहान को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को होगा। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने तिब्बी साइंस से मुतालिक इम्तिहानात के कौमी बोर्ड टेक्नोलॉजी शराकतदारों और उन दीगर मुतालिका फरीकों की तैयारियों का जायजा लिया जो इम्तिहान के इनेकाद से मुंसलिक हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा में महानदी और उसकी मुआविन नदियों में तोगयानी के साथ सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है, जिससे कटक पुरी जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा और खोरदा अजला के नशेबी इलाकों को एक बार फिर खतरा लाहक हो गया है। 10 नशेबी अजला मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि हीराकुंड बांध से 22 गेट के जरिए सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं जबकि 2,69,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुटायम उडुकी और मलापुरम जिलों से आज बारिश से वाबस्ता 6 अमवात की इत्तला मिली है जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-44 के बंद होने के पेश नजर रेलवे ने फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से निमटने के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि शाहरा बंद होने के बाद श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नजर कमर्शियल कंट्रोल जम्मू तवी की दरखास्त के बाद ये फैसला किया गया है। मरकजी सरकार ने टैक्स मुंतकली की एक इजाफी किस्त के तौर पर

पत्रकार साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रकार शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्धभूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूं, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे

माद्र के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छा सभी को देते हैं। वीर प्रसूमा की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक हैं। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी, क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी।

0: वेदी व संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था, लोगों को लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम यही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्य

0: संकल्प में संपूर्ण।
1: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से मिश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती, अत्यल्प में संपूर्ण। और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
0: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
1: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रप्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
0: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
1: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथे बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
0: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आज कल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
1: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड भविष्यत खंड मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण

0: मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
1: हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
0: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
2: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
0: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
3: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
4: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का, रचनाकार नवाब राय। यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
3: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
5: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे

0: वतन एक सुंदर नमूना है क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
1: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्काल

0: माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
2: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक को दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। Chinmaya sisters are one of the leading and popular duo in the field of Karnataka.

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मां मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा। रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: You just heard to a Thani Avartanam played on the Mridangam by Shri B. Ganapati Raman and by Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदि ताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मन में।
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मन में, a composition of Papanasam Sivan in Raga Jaunpuri set to Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में
5: द नेशंस फर्स्ट डबल पोडियम फिनिश इन द कैटेगरी। इन अदर एथलेटिक्स इवेंट्स, ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल वन सिल्वर, while Silva Prabhu earned bronze. On the judo mat, Unnati Sharma